मिडिल वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपकी मित्रिला आपके साथ हूँ। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देशगान से।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इसमें जानिए तुलिका शर्मा के विचार।
1: जरा सोच के देखिए, क्या सिर्फ आप उतना ही कमाते हैं जिनसे आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सके? फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम भविष्य के लिए कुछ बचत भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उतना कमाएं जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और भविष्य के लिए कुछ बचा सकें। क्या भविष्य के लिए कुछ बचाने के अलावा भी आप उस धन का कुछ करते हैं? फिर आप कहेंगे हाँ, हम जो भी काम करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपनी खुशी के लिए भी खर्च करते हैं। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं वो खुशी के लिए कर रहे हैं। काम करने के बाद आपको जो भी हासिल हो रहा है उसका एक बाय प्रोडक्ट है खुशी। लेकिन सोच के देख

0: देखिए, यदि काम करते वक्त ही आपको खुशी मिले तो वो काम कितना आनंददायी होगा। जी हाँ, काम वो करिए जिसमें खुशी हासिल हो, या उस तरीके से कीजिए जो आपको खुश कर सके, क्योंकि पैसे से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। वो सभी काम जो आपके मन के हैं, जो आपके शौक के हैं, या जो नए तरीके के काम हैं, निश्चित तौर पर वो आपको खुशी देंगे। जब काम करके पैसा कमाएंगे, पैसे को बचाएंगे, फिर उसको अपनी रुचि के हिसाब से खर्च करेंगे और फिर खुशी मिले, इतने स्टेप्स को पार करने के बाद यदि खुशी आपको मिलती है तो ज़्यादा बेहतर है कि काम कीजिए और उसके तुरंत बाद आपको खुशी मिल जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह का एक उदाहरण है महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास शिरोल तालुका के शेडगल गांव के महादेव मगदम परिवार का। इस परिवार ने 1990 के दशक में खेती बंद कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंचाई से खेत खारे हो गए थे और बंजर हो गए थे। गांव के जो वयस्क थे वो दूसरों के खेतों में काम करने लगे थे और जो युवक थे वो दिहाड़ी कामगार बन गए थे। वहाँ कई खेत तो ऐसे थे जो 5-5 दशकों से बंजर पड़े थे। महादेव मगदम के परिवार ने नए तरीके की खेती करना शुरू किया और इस खेती से उन्हें इतना फ़ायदा हुआ कि उनके सिर्फ 2 एकड़ के खेत में 100 टन गन्ना होता है। और जानते हैं ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ भूमि सुधार के प्रयासों से, और बहुत लंबा प्रयास नहीं करना पड़ा, सिर्फ 3 साल में महादेव मगदम ने ये हासिल कर लिया। न सिर्फ महादेव मगदम बल्कि उनकी तरह के सैकड़ों किसानों ने इस परियोजना का लाभ लिया है, और इस परियोजना को शिरोल पैटर्न कहते हैं, जिसमें किसान खुद अपने कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, कर्ज लेते हैं और ज़मीन की सतह के नीचे नालियों का ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिनसे खेत से छेद वाले पाइप नाली से जुड़े होते हैं। यदि खेत में थोड़ा ज़्यादा पानी लग भी गया तो उन पाइप से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकल जाता है। ये छोटा सा उपाय करने से वो न सिर्फ अपनी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सके बल्कि और ज़मीन को बंजर होने से भी बचा सके। ये जो भूमि सुधार की तकनीक है, ये उनकी ज़मीनी संपत्ति को स्थायी क्षय से बचाकर फसल के पोषण को भी बचाती है, किसानों का शहर में पलायन रोकती है। पहले ऐसी ज़मीन को अनुपजाऊ बताकर बैंक कर्ज देने से मना कर देते थे, लेकिन ऐसी सहकारी विधियों से लोगों की सोच बदली है। जो लोग खेती से दूर हो गए थे आज फिर खेती की तरफ लौट आए हैं। इन गन्ना किसानों को बड़े बड़े उद्योगपतियों का न सिर्फ मार्गदर्शन मिल रहा है बल्कि आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन क्या ये फ़ायदा उनका खुद का फ़ायदा है? नहीं, ये फ़ायदा पूरी मानवता का फ़ायदा है। यदि हम मन से कोई काम करते हैं तो इस तरह के इनोवेशंस अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि यदि काम में 100% मन लगा होगा तो ऐसे ऐसे रास्ते काम करने के आप निकाल पाएंगे कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, इसमें जाने आपने तुलिका शर्मा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्री

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। बायो गैस की उपयोगिता, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन यापन कृषि, पशुपालन, फलोत्पादन, मछली पालन और कुटीर उद्योगों पर आधारित है। देश में ऊर्जा आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सिंचाई और उद्योगों में बिजली की हमेशा कमी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से मिलने वाले गोबर, कृषि अवशेषों का उपयोग यदि बायोगैस

0: उत्पन्न करने में किया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर खाना बनाने का कार्य पशु द्वारा परित्याग किए गए गोबर या जंगलों से लकड़ी चुनकर ही पूरा किया जाता है। लकड़ी काटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और गोबर से उपले बनाकर प्रयोग करने से खेतों में खाद की मात्रा में कमी आ रही है। साथ ही खाना बनाते समय निकले धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक कण मकानों में कालिख फैलाने के साथ साथ आँखों और फेफड़ों को भी प्रभावित करते हैं। बायोगैस संयंत्र ऐसी जगह बनाएं जहां पर पानी एकत्रित न होता हो, जल निकास का उचित प्रबंध हो, खुली जगह हो जहां पर हर समय धूप आती जाती रहती हो। संयंत्र आकार का चयन उपलब्ध पशुओं के आधार पर करना चाहिए। यदि 50 किलोग्राम गोबर प्राप्त हो रहा है तो 2 घन मीटर का संयंत्र तैयार करना चाहिए और अधिक गोबर प्राप्त हो रहा है तो उसी के आधार पर संयंत्र का आकार बढ़ाना चाहिए। बायोगैस से खाना बनाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था भी की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद तैयार करता है जिसे तुरंत निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस से तैयार खाद खेतों में प्रयोग करने से खरपतवारों की मात्रा में कमी आती है। जैविक खादों के प्रयोग करने से फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। साथ ही बायोगैस संयंत्र में पाचन के बाद जो खाद बाहर निकलती है उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जिससे अनाज, फल, सब्जियां पौष्टिक दृष्टि से अधिक समृद्ध होती हैं। बायो खाद के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संतुलित रूप से बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन रहता है। भूमि की जलधारण क्षमता विकसित होती है जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। अल्प वर्षा और अतिवर्षा की स्थिति में फसलों को लाभ पहुंचता है। बायो खाद के उपयोग से फसल उत्पादन में 15-20% की वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद बनाने में 3-6 माह लग जाते हैं जबकि बायो खाद तुरंत तैयार होती है। बायो खाद से फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गोबर की खाद सीधे खेत में खाद के रूप में प्रयोग करने पर दीमक लगने की संभावना रहती है जबकि बायो खाद के प्रयोग से दीमक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। फसलें स्वस्थ रहती हैं, अधिकतर कीटनाशक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र खाद पदार्थ डालते रहने से घर के आसपास साफ सफाई वातावरण भी स्वच्छ रहता है जिससे तरह तरह की बीमारियां भी नहीं फैल पाती हैं। बायोगैस संयंत्र स्थापित करें जिससे वनों पर बढ़ता हुआ अनावश्यक दबाव घटेगा। भूमि क्षरण जैसी समस्याओं को रोक सकते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति संतुलित रहेगी। उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि और जल प्रदूषण कम करने और स्वच्छ वातावरण के लिए बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बायोगैस बनवाएं और उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण में बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ फसलों से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।
1: बायोगैस की उपयोगिता, इस संबंध में जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह और कार्यक्रम था कृषि चर्चा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए,
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं,
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें,
2: ब्रश करते समय दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें,
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं,
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें,
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं,
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें,
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें,
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं,
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें,
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं,
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं,
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का,
1: पानी बचाएं भविष्य सजाएं।
4: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
5: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें।
6: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
7: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादकमुक्त भारतस्य निर्माणम्।

0: निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26-2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24-2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10-वर्षात्मकः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26-2000 राष्ट्रियगौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रियगौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171-तमे संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिकसुरक्षाप्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु 3-वर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय की अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद्धेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेशसर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

इसके पहले 7:20 पर काव्य पाठ कार्यक्रम में कादंबरी आर्य की कुछ कविताएं सुनी जा सकती हैं। प्रातः 7:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकता है 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग ग्वालियर ये कार्यक्रम सुना जा सकता है रोज ही की तरह प्रातः 9:02 पर। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं निर्भय सक्सेना का गायन, राग होगा राम कली। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं प्रातः 10:05 पर। कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। 11:00 से प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होता है। 11:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 12:00 और 2:00। संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुना जा सकता है 12:30 पर। 12:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति होगा। 12:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति होगा। 12:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। 2:30 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुना जा सकता है। ये तो थे हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

अब जान लिए हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को। शाम 4 बजे विशेष कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। शाम 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है शाम 6 बजे। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये विषय होंगे चर्चा के। इसके अलावा भेंटवार्ता सुनी जा सकती है टाइफाइड कारण और रोकथाम, डॉक्टर KS परिहार से निशा मोरी की बातचीत इस भेंटवार्ता में सुनी जा सकती है। ये सभी कुछ हम समेट लाएंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल में। समय वही होगा यानी शाम 7:20 पर। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा जन आंदोलन। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज नई दिल्ली में होगा MOU। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण। चुनाव के लिए प्रशासन ने की पुख्ता व्यवस्था। और प्रदेश में किसान आंदोलन खत्म। राज्य सरकार अब 60% तक खरीदेगी मूंग। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख भी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। इस मंच का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर करीब 350 एकड़ में विकसित होगा, जिसमें मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट और 5G/6G अनुसंधान की सुविधाएं होंगी। भारत सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इस परियोजना से करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश और 5 हजार करोड़ के रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार कलेक्टरों से संवाद करते हुए उन्होंने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्ड और पंचायत स्तर पर इकाइयां बनाकर शिविर से पहले ही लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि हर शुक्रवार अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के लंबित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई को इंदौर से इस राज्य स्तरीय महोत्सव की शुरुआत की थी। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस महोत्सव में किसानों को ड्रोन से खाद छिड़काव और स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। कल सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज से 291 मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। दतिया विधानसभा के 36 सेक्टरों में सेक्टर अधिकारियों के साथ चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। स्वीप आइकन सारिका खारू ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। भाजपा ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ दीपोत्सव आयोजित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। यह अभियान अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रेल विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीहोर स्टेशन पर 10 अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव भी उपलब्ध कराया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय ज्ञान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय हित अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का

0: घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब हर पात्र किसान से 25 के बजाय 60 फीसदी तक मूंग खरीदेगी। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी। कल रात मंत्रालय में हुई बैठक के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख अब 20 अगस्त होगी। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने बताया कि ई टोकन व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च समिति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री कल देर शाम उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि सांदीपनी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए की राशि से सांदीपनी विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने मंदसौर में गौ संरक्षण कार्यक्रम चला रहे गुरु पंडित भीमा शंकर शास्त्री की भी सराहना की।
2: 60 सांदीपनी विद्यालयों की सौगात मिल रही, 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के। सरकारी स्कूल बारिश के समय तो लगते ही नहीं थे, लगे तो टाट पट्टी घर से ले जाना पड़ती थी या टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था, बड़ा कठिन दौर रहता था। इसलिए ये मानवता के दृष्टिकोण से भी हमने अपने विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय रखा है। 2 साल के अंदर जो पहले और दूसरे चरण के विद्यालय बन रहे हैं, 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले, जोरदार अभिनंदन कर 25,500 करोड़ के।
1: प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। बड़वानी पुलिस ने जिले के विद्यालयों में चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनमें विद्यार्थियों ने 16,700 ड्राइंग शीट्स तैयार की हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए बड़वानी पुलिस का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। सावन माह की शुरुआत आज से हो गई है, इसका समापन 28 अगस्त को होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकाल की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जबकि अंतिम राजसी सवारी 7 सितंबर को होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोर सिंगनाथन ने रजत पदक जीता। इससे पहले मुरली श्री शंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीता। वे राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन होगा, इसके लिए शहर में तैयारियां जारी हैं। इंदौर में 3 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा, इसमें युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार की जानकारी दी जाएगी। खंडवा में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम हुए। आगरमालवा के नए कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने अधिकारियों की बैठक ली, उन्होंने योजनाओं की प्रगति भी जानी। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ, ये एक मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सतना में श्रमिकों के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया जा रहा है, इससे उन्हें मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य पाठ। इस कार्यक्रम में सुनिए कादंबरी आर्य की कुछ कविताएं।
1: मेरी पसंद का एक शेर कि दिल को रोकूं मगर मचल जाए, दिल को रोकूं मगर मचल जाए, चीज अपनी नहीं, चीज अपनी नहीं पराई है। और एक शेर यूं हुआ कि अब वो दुश्मन नहीं रहा मेरा, अब वो दुश्मन नहीं रहा मेरा,

किसने झूठी खबर फैलाई है, किसने झूठी खबर फैलाई है। पांव सूरज के भी फिसल जाएं, पांव सूरज के

का। और होता क्या है, कभी कुछ सुनाना कभी कुछ बताना, कभी कुछ सुनाना कभी

घटाओं से जैसे लगा धूप निकली, घटाओं से जैसे लगा

का न इकरार करना, न इनकार करना, न इकरार करना,

का था सबको सताया, बहुत जिसने कल तक था सबको सताया बहुत।

पुराना किसी का न होगा जमाना कभी भी किसी का। और साथियों एक और मतला और चंद अशरात मैं पेश करती हूँ, मुलायजा फरमाएं।

प्यास खामोश आज थी अपनी। और मेरे दिल से निकला हुआ एक शेर, मुझको बख्शी है।

अपनी। यथार्थ की धरातल का शेर हो गया आज वो भी शर्मिंदा।

0: वो प्यास थी अपनी। जाते जाते एक मतला और एक शेर, हूँ बदनसीब मेरा घर यूं ही जला होगा, हूँ बदनसीब मेरा घर यूं ही जला होगा, लगा दे आग वो इतना नहीं बुरा होगा, लगा दे आग वो इतना नहीं बुरा होगा।
1: काव्य पाठ कार्यक्रम में अभी आप कादंबरी आर्य से उनकी कुछ कविताएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: वक्त फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले की आवाज़ में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत है और संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।
1: कभी हम

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तेरे घर के सामने, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते।

0: सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तुम सा नहीं देखा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप

0: या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
5: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
5: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
6: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म तीसरी कसम से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत। गीतकार है मजरू, संगीतकार आर डी बर्मन और आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ताए कितना आता है?
2: जीरो।
1: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और

0: रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन सुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी संभुनाथ रे।
3: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास

0: रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ते ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the amendment in the bill has been

0: Many dailies. Anti-paper leak law tightened, headlines the Pioneer. The Supreme Court restricts retrospective environmental clearances, quashing 2021 office memorandum on the matter with prospective effect, reports the Hindu. India and four other nations face 100% tariffs as US Senate advance Russia sanctions bill, reports Hindustan Times. Front paged by the Indian Express, Gulveer Singh's monumental feat was captured in the headline. From Sirsa mud ground to India's first Commonwealth Games men's 10,000 meters silver. The coverage noted that despite battling brutal weather, long odds and a world-class field, Singh emerged victorious. Ahead of dengue vaccine rollout in India next year, a study reported in the Times of India reveals that all four strains of the virus have been found to be in circulation simultaneously in 8 states and union territories. And finally, ahead of the Delhi High Court's review of the capital's stray dog management measures, a ground inspection suggests the problem in Delhi remains unresolved, writes the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak amendment bill with stricter punishment of up to 10 years in jail. Polling begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravan month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान।
3: कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 11 जुलाई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

हमारे देश में स्वाधीनता का सूर्योदय किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, वो असंख्य देशभक्तों के स्वयं जलकर प्रकाश बनने के त्याग का परिणाम था। उस पावन प्रभात की पहली किरण में अनगिनत क्रांति वीरों के रक्त की आभा थी, स्वतंत्रता की हर सांस में उनके बलिदान की सुगंध थी और मुक्त गगन में लहराते तिरंगे की हर लहर में उनके राष्ट्र प्रेम का स्पंदन था। कितने ही ऐसे सपूत हुए जिन्होंने अपने सपनों को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। किसी ने यौवन की मुस्कान त्याग दी, किसी ने परिवार का स्नेह, किसी ने सुख सुविधाओं का संसार, तो किसी ने अपने प्राणों का अमूल्य उपहार। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने नहीं निकले थे। उनका तो एकमात्र स्वप्न था कि भारत स्वाधीन हो, भारत आत्मगौरव से आलोकित हो।

एक ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मणिलाल मूलाशंकर पंड्या, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने मौन समर्पण के साथ स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। मणिलाल पंड्या का जन्म 20 जुलाई सन 1911 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मूलाशंकर पंड्या था। ये 20वीं सदी का उदयकाल था। गुजरात का ऐतिहासिक नगर पाटन उस समय गायकवाड़ राजवंश की छत्रछाया में अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोए हुए था। इसी नगर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में उनकी परवरिश हुई। पिता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और विद्या के संस्कार दिए। पराधीन भारत की दशा से उस समय के युवा अत्यंत आक्रोशित थे। बड़ौदा रियासत की प्रगतिशील शिक्षा नीतियों और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने पाटन के युवाओं में एक मूक चेतना भर दी थी। मणिलाल पंड्या ने जब होश संभाला तब उनके कानों में तिलक जी के स्वराज की हुंकार गूंज रही थी, गांधी जी के आंदोलनों का आमंत्रण गूंज रहा था और उनके भीतर एक संकल्प जाग चुका था कि उनका जीवन देश हित में समर्पित होने के लिए है।

मणिलाल पंड्या ने देश की पुकार पर अपने मित्रों के बीच स्वदेशी का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था। वो स्वदेशी और स्वराज का मंत्र लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह आरंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रभाव पूरे भारत में हुआ और गुजरात तो इसके केंद्र में ही था, इसलिए गुजरात की धमनियों में राष्ट्रवाद का रक्त उबल रहा था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने मई सन 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध धरसाना सत्याग्रह की योजना बनाई। ये स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था। दरअसल गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई सन 1930 को सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक डिपो की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया। ये धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण छापे की योजना थी। ब्रिटिश दमन चक्र चला। जब इन सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठियां बरस रही थीं, तब गुजरात के स्वयं सेवकों के जत्थे में मणिलाल मूलाशंकर पंड्या अग्रिम पंक्ति में सीना ताने खड़े थे। पुलिस की लाठी बरसती जा रही थी और महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की वैश्विक चर्चा के साथ ही ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। धरसाना सत्याग्रह ने मणिलाल पंड्या को ब्रिटिश शासन की नज़रों में ला दिया। उन्होंने पाटन के स्थानीय बाजारों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसके साथ ही शराब की दुकानों के सामने धरनों का कुशल नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत उनकी गतिविधियों से बौखला उठी। उन्होंने मणिलाल पंड्या को गिरफ्तार कर साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया। एक अहिंसक योद्धा जेल के लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गईं, लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया।

जेल से रिहा होने के बाद मणिलाल पंड्या का संकल्प और भी फौलादी हो चुका था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में स्वाधीनता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक ओर ब्रिटिश भारत था, वहीं दूसरी ओर देसी रियासतें थीं। पाटन बड़ौदा रियासत का अंग था, जहां उत्तरदायी

नई शासन की मांग को लेकर बड़ौदा राज्य प्रजामंडल तीव्र गति से सक्रिय हो रहा था। मणिलाल पंड्या जानते थे कि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है। उन्होंने पाटन तथा मेहसाणा के सुदूर ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शोषित किसानों से संवाद किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया और रियासती करों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके सहयोगी थे कर्मठ स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल मगनलाल शर्मा। दोनों ने मिलकर स्थानीय युवाओं का एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क तैयार किया जो खादी, छुआछूत उन्मूलन और राष्ट्रीय शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लगा। सन 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन दिशाहीन न हो जाए इस चिंता से अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को हवा दी। पाटन में इस आंदोलन की कमान संभाली मणिलाल पंड्या जैसे नायकों ने। भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस तरह पाटन और मेहसाणा का संपूर्ण क्षेत्र रातों रात गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। मणिलाल पंड्या ने देशभक्ति पत्रिकाओं और बुलेटिनों के संपादन तथा वितरण का कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ गुप्त रूप से किया। अंग्रेजी व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन्होंने सरकारी डाक, टेलीग्राफ लाइन और रेलवे पटरियों को बाधित करने वाले कई गुप्त अभियानों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहते हुए संचालन कर रहे थे, तब उत्तर गुजरात तक उनके संदेशों और रसद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुँचाने का काम मणिलाल पंड्या ही कर रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें भारी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें अत्यंत कठोर कारावास में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनका आत्मबल अजेय रहा। देश में आज़ादी की सुबह आने तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अंततः देश आज़ाद हुआ। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं था। वो एक मूक कर्मयोगी की तरह अपनी जड़ों की ओर लौट आए। वो जीवन के अंतिम क्षणों तक खादी भंडारों के माध्यम से स्वावलंबन का मंत्र देते रहे तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु तन मन धन से समर्पित रहे। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: श्रोताओं, यह एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना है। भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपने अपने मकान, फ्लैट या अन्य परिसर को किराए पर दिया है अथवा किसी किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी या अन्य सहायक को रखा है तो उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पुलिस थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, छात्रावास, निर्माण स्थलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर तथा घर घर जाकर वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित संस्थानों द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। ये थी जनहित में जारी महत्वपूर्ण सूचना। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस मंच का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दूर संचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टर्स और संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वार्ड और पंचायत स्तर तक लंबित समस्याओं का निराकरण करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। दतिया विधानसभा के 36 सेक्टरों में सेक्टर अधिकारी के साथ चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। और प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब हर पात्र किसान से 25 के बजाय 60% तक मूंग खरीदेगी। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दी है। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख अब 20 अगस्त होगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्रेला आपके साथ। श्रोता मित्रों, आज है विश्व मानव तस्करी विरुद्ध दिवस, जो कि हर साल 30 जुलाई को यानी आज के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने और इस अपराध के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। लोगों को मानव तस्करी के खतरों और इसके विभिन्न रूपों के बारे में बताना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा तस्करों की चंगुल से छूटे हुए लोगों के अधिकारों और उनकी भलाई को बढ़ावा देना, सरकारों और समाजों को इस अपराध को रोकने और तस्करों को सजा दिलाने के लिए एकजुट कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में एक प्रस्ताव पारित किया और इस दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। इस वर्ष यानी 2026 को इसका थीम है घोटाले के जाल में फंसे हैं, जो कि साइबर धोखाधड़ी और जबरन साइबर अपराध में फंसाए जा रहे पीड़ितों के शोषण पर केंद्रित है। मानव तस्करी के एक तेजी से फैलते हुए रूप की ओर ध्यान आकर्षित करता है ये विषय, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूह बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए लोगों का शोषण करते हैं। पीड़ितों को जबरन अपराध करने के लिए तस्करी किया जाता है और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के अभियानों में फंसाया जाता है और उनको इस तरह के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। शोषण का ये रूप साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि संगठित अपराध की बढ़ती हुई परस्पर संबद्धता को दर्शाता है। मानव तस्कर अक्सर फर्जी नौकरी के विज्ञापनों के जरिए पीड़ितों की भर्ती करते हैं, जिनमें विदेश में वैध रोजगार के अवसर देने का वादा किया जाता है। असली नौकरी मिलने की उम्मीद में पीड़ित दूसरे देश की यात्रा करते हैं, लेकिन वहां उन्हें अवैध धोखाधड़ी वाले ठिकानों में कैद कर दिया जाता है। इन परिसरों के भीतर पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें प्रेम प्रसंग धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी और दुनिया भर के लोगों को निशाना बनाने वाली अन्य ऑनलाइन योजनाएं भी शामिल होती हैं। उन्हें लगातार निगरानी में रखा जाता है और हिंसा, धमकियां, कर्ज के बंधन और अत्यधिक काम के दबाव का शिकार बनाया जाता है, जिससे वे भय के माहौल में फंस जाते हैं और उनके पास भागने का बिल्कुल भी अवसर नहीं होता। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में UNODC का अनुमान है कि अकेले 2023 में घोटालों के कारण 18 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक का वित्तीय नुकसान हुआ। इन नुकसानों का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में स्थित संगठित अपराध समूहों के द्वारा घोटालों से जुड़ा हुआ है। मानव तस्करी विरोधी विश्व दिवस 2026 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास परिषद यानी UNODC पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सीमा पार न्यायिक और कानून प्रवर्तन सहयोग को बेहतर बनाने हेतु सशक्त कार्यवाही कर रही है। बहरहाल श्रोता मित्रों, आज से सावन का पवित्र माह भी शुरू हो रहा है। इस माह में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। कांवड़िए गंगा जल अपने कांवड़ों में भरकर भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं, तो अब क्यों ना इस मौके पर कार्यक्रम का पहला गीत हम भी कुछ इस तरह से गुनगुना लें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर को। और आपके इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र इला आपके साथ। श्रोता मित्रों, एक समय ऐसा था ना जबकि बीमारियों का उपचार आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से ही किया जाता था। ज़्यादातर समस्याओं का समाधान घर पर दादी नानी के पारंपरिक ज्ञान से ही हो जाता था। आधुनिक चिकित्सा के प्रसार के साथ ये परंपरा अब कमज़ोर पड़ रही है, जबकि आयुर्वेदिक औषधियां अब भी अनेक रोगों के उपचार में प्रभावी और भरोसेमंद हैं। एक शोध संस्थान के पहल पर आरोग्य धाम की ओर से संचालित दादी माँ का बटुआ अभियान पर सटीक बैठती है। इस अभियान के अंतर्गत करीब 200 गांव के लोगों को निरोगी बनाया जा रहा है। आयुर्वेद से जुड़ाव, स्वास्थ्य स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रतीक इस मॉडल से ग्रामीण विकास के सपने को संबल मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोक ज्ञान को पुनर्जीवित करने में इससे मदद मिली है। दादी माँ का बटुआ पूरी तरह सेवा भाव पर आधारित योजना है। इसके अंतर्गत 1996 में 12 औषधियों वाली किट के साथ चित्रकूट से अभियान की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे लोगों को इसका लाभ हुआ तो सफलता के आधार पर क्षेत्रीय रोगों के अनुरूप औषधियों में परिवर्तन करके और संख्या भी बढ़ाई गई। अब एक छोटे बटुए में 33 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ रखी जाती हैं, जिन्हें चित्रकूट स्थित आरोग्य धाम की रसशाला में स्थानीय जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। शुरुआत में ग्रामीणों में कुछ झिझक थी इसको लेके, पर रोगियों के जब स्वस्थ होने पर ये झिझक अब दूर हो गई है। अब कार्यकर्ता घर घर उपचार करने लगे हैं। अब ये योजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 200 गांवों तक पहुँच चुकी है। गांव के सेवाभावी प्रौढ़ों को इससे जोड़कर सिरदर्द, बुखार, सर्दी जुकाम, पेट दर्द, उल्टी दस्त जैसे सामान्य रोगों के प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद वो लोगों का उपचार करते हैं। गंभीर रोगियों को आगे के उपचार के लिए आरोग्य धाम लाया जाता है। कई बुजुर्गों के पास जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जिसे संरक्षित करने के लिए वैद्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। अब तक 550 युवाओं को आयुर्वेद का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि वो रोजगार परक भी बने। है ना ये एक अच्छी खबर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोता मित्रों, कई बार अंचल में नौकरी बदलने वाले हजारों कर्मचारियों और नौकरी पेशा युवाओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ी राहत भरी सौगात दी है। अक्सर देखा जाता है कि ग्वालियर सहित आसपास के क्षेत्रों में नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी अपने पुराने पीएफ खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। कई बार अलग अलग UAN बनने, रिकॉर्ड में गड़बड़ी या पुराने खाते की पूरी जानकारी न होने के कारण गाढ़ी कमाई का पैसा निष्क्रिय खातों में फंसा रह जाता है। अब EPFO के सदस्यों की इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए आधार आधारित नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे पुराने निष्क्रिय PF खाते का पैसा मौजूदा सक्रिय UAN में ट्रांसफर करना बेहद आसान हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी का पुराना पीएफ खाता निष्क्रिय हो गया है और उसका आधार सत्यापित है, तो उस खाते को मौजूदा सक्रिय UAN से जोड़ने और बैलेंस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफ़ी सरल हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को एक ही स्थान पर सुरक्षित लाना और मल्टीपल UAN की समस्या को समाप्त करना है। पुराने पीएफ खाते को नए सक्रिय UAN से जोड़ने या सेटलमेंट के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर कर्मचारी अपने आधार के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वेरिफिकेशन होते ही उन्हें अपने सालों पुराने पीएफ अकाउंट का एक्सेल मिल जाएगा। पुराने खाते की जानकारी मिलते ही सदस्य उस खाते को आसानी से अपने वर्तमान एक्टिव UAN में ट्रांसफर कर सकेंगे या फिर उसे निकालने के लिए क्लेम कर सकेंगे। इस डिजिटल सुविधा के शुरू होने से ग्वालियर चंबल अंचल के कर्मचारियों को अब ना तो पीएफ दफ्तर जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अपनी पुरानी कंपनियों के चक्कर लगाने होंगे। सारा काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: श्रोता मित्रों, रात के 12 या 1 बजते ही जब घर के अधिकांश लोग सो चुके होते हैं, तब कई घरों के किचन में हलचल शुरू हो जाती है। कोई फिर से केक निकाल रहा

होता है तो कोई इंस्टेंट नूडल्स बना रहा होता है, तो कोई चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ वेब सीरीज का अगला एपिसोड देख रहा होता है। लोगों के बीच मिडनाइट स्नैकिंग अब कभी

सकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारा शरीर दिन और रात के हिसाब से काम करने के लिए बना है, ये तो आप सभी जानते हैं। रात के समय मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है, इसीलिए इस समय बार बार भारी भोजन करना पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे कई लोगों को एसिडिटी, गैस, सीने में जलन और बेचैनी की शिकायत होती है। साथ ही अगर रात में हाई कैलोरी, हाई प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, चॉकलेट या इंस्टेंट नूडल्स खाना आदत बन जाती है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बुलावा देती है। इससे ब्लड शुगर के असंतुलन, फैटी लीवर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। लगातार मिडनाइट स्नैकिंग से वजन बढ़ने, ब्लड शुगर असंतुलित होने और नींद की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। देर रात खाना खाने से बॉडी क्लॉक भी प्रभावित होती है। रात में यदि भूख लगे तो फल, बिना नमक वाले मेवे, दही या दूध जैसे विकल्पों को चुनें। सोने से कम 2 घंटे पहले मुख्य भोजन करें और उसके बाद यदि भूख लगे तो हल्का फुल्का ही कुछ खाएं। तो अपनी सेहत के लिए इन खास बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा आपके मनोरंजन के लिए भी हम ध्यान रख रहे हैं आपको ये गीत सुनवाने का। तो चलिए गुनगुनाते हैं इस गीत को।

इसके साथ ही अब हम समेटते हैं अपने इस कार्यक्रम को। कल फिर नई खबरों और नगमों को लेकर हाजिर होंगे आपके अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए निर्भय सक्सेना का गायन राग रामकली।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप निर्भय सक्सेना का गायन सुन रहे थे। राग था रामकली, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब पेश है जिले की चिट्ठी। आज आप सुनेंगे राजगढ़ जिले की चिट्ठी, आलेख कमल खस का, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी, आलेख कमल खस, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात विकास कार्यों की। जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नरसिंहगढ़ में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बने नए सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं वाले इस स्कूल में एलकेजी से 12वीं तक करीब 1300 विद्यार्थी पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्रयोगशाला, संगीत, नृत्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने राजगढ़ जिले में विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण की प्रगति भी जानी। उन्होंने मोहनपुरा बांध से क्षेत्र में हुए बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने को भी कहा। इसके अलावा राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने पार्वती नदी पर बन रहे बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांध बनना उनका पुराना सपना था, जो अब पूरा हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर 174 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। बांध का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाद जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के जिले में इस अभियान के तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से खुद नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मां बिजासन धाम की पहाड़ी पर पौधरोपण किया गया। सांसद रोडमल नागर और कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बरगद, पीपल और नीम सहित कई पौधे लगाए। जिले में कई दिनों के बाद मानसून ने जोरदार वापसी की है। अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिल रहा है। हालांकि कई शहरी इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। गर्मी और एल नीनो के संभावित असर को देखते हुए जिले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भूजल स्तर बढ़ाने और पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जल स्रोतों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की पहल संवाद से समाधान लोगों की पसंद बन रही है। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। जिला अस्पताल में आधुनिक आकस्मिक चिकित्सा विभाग शुरू हो गया है। अब जांच, इलाज, भर्ती और जरूरत पड़ने पर रेफरल की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। इससे गंभीर मरीजों को बिना देरी बेहतर इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे आपातकालीन सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी होंगी। जिला शिक्षा विभाग ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 9 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई शिकायतों की जांच के बाद की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय सेवा में नियमों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों की जांच जारी रहेगी। राजगढ़ जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की जान चली गई। शाजापुर से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रही

एक कार खुजनेर के पास तालाब में गिर गई। ग्रामीणों ने बचाव का प्रयास किया लेकिन सभी पांच लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ होमगार्ड लाइन में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और राहत बचाव कार्यों का व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत स्थापित स्मार्टपुर केंद्रों पर ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, बैंकिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंत में कुछ धार्मिक समाचार। जिले भर में देवशयनी एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु करीब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चतुर्मास की शुरुआत भी हो गई है। वहीं ब्यावरा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन के तत्वावधान में आयोजित यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे शहर में भजन कीर्तन और जय घोष से भक्तिमय माहौल रहा। रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे यस बॉस फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता मित्रों ने। खेल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, टग्गू भाविका सिक्का, पद्मा डॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, ममता बेन शाह और राजेंद्र जी शाह, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, मस्तानापुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवर्णकर, राही श्रीमती सरिता गवर्णकर, प्रिंस एकांश गवर्णकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवर्णकर, सिद्धांत गवर्णकर, अर्जुन गवर्णकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवर्णकर, सुमित गवर्णकर और कुमारी ध्वनि गवर्णकर, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या अरव खुराना और एसके। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म जख्म से। इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक ने और सुनने की फरमाइश की है ग्राम महसवाणी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से धनंजय धाड़े, शत्रुघ्न धाड़े, वकील बाल्मीकि नैनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े, तहसील रोड गंजडोंडवारा से कैच राही बेगम गुड़िया, वकील प्रेमी और हम्माद जमील, ग्राम पीपर लोड खरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और चित्रांश शिवांश वर्मा, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि और मायरा, गांव जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और उनके साथी, गुरमीत सिंह मीता और उनके साथी, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, कोरिया से डोनेट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटा और उनके परिवार के सभी सदस्य, करणवीर हाउस बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत सिंह जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंदर वीरेंदर, कुलदीप, सीमू, दमन और अभिजीत। चलिए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए

0: चोलापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जंजीर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत पलक मुछार और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। घमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीम अंसारी और शमसुल कमर राही। इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बीबी अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी। राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया। गौरैया चौक अम्बाला से संदीप भगोड़िया और राकेश। बक्सर से राज एस डी वली अंसारी और उनके साथी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम नाज, आसमा नाज अंसारी और बेगम प्रमिला जाटव। जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और या मिनी राज। जेल रोड राजगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव। बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजकुमार यादव।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: श्रेया घोषाल की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए जहर फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनके साथी, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से, जवाहरनगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, तंत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश और उनके परिवार के सभी सदस्य, कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और उनके परिवार के सभी सदस्य, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रकाश यादव, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, CT दीवाना, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी, ग्राम पंजनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार जनसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक जनसोलिया, कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सानी, मोहम्मद अफजल मलिक और उनके साथी, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और उनके परिवार के सभी सदस्य, बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित दामोदर।

जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली लाडली बेबी निशा और उनके सभी साथी, गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, मुक्कम पोस्ट कालेगांव जफाराबाद मराठावाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, हर्षद देशमुख, कुमारी प्रणीता प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, पोती कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख और उनके परिवार के सभी सदस्य, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगामा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर और कुमार गौरव मंदुरकर, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू, गांव कहरा जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप अनहद और गुरशबद। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जुबैदा का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए

जिसे हमने लिया है फिल्म वीर से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मरन ने, और सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, गांव कालना, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासारा, सचिन, सतीश, योगेश और ध्रुव, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी और उनके परिवार के सभी सदस्य, राहुल बंसोड़, समय बंसोर, सर बंसोड़, शरण बंसोर और मीना लुम्बिनी नगर ओकालो से, अकोला से, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतिभा लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और उनके परिवार के सभी सदस्य, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बीबी गर्वी, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और उनके साथी, करणवीर हाउस बटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर जौड़ा, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, दमन और अभिजीत, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना और उनके परिवार के सभी सदस्य, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना।

वांटेड फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे इन श्रोता मित्रों ने। संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी, दीपक और चांदनी। बिरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा और उनके परिवार के सभी सदस्य। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, ऋषि राजावत, चित्तरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी सदस्य।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: और मारक समता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तैयार की गई समीक्षा की। श्री वर्णवाल ने कहा कि अभियान के दौरान सभी विभागों की लंबित समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दूर संचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह मतदान शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। अभियान को सफल बनाने में इंदौर पुलिस और बड़वानी पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नॉवल बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए

0: का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। भारत अब तक 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे।
2: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज स्वागत है आपकी आपका श्वेता की ओर से। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम भूलते जा रहे हैं, वो है हमारा वर्तमान, जिसे हम आज भी कह सकते हैं। जैसे हम अपने भविष्य के लिए सभी सपने संजोते हैं, अपनी पूंजी, अपना सामान सब इकट्ठा करके रखते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हमारे काम आए। जो गुजर चुका है उसे भी हम याद करते हैं, उससे भी हम सबक लेते हैं अपनी गलतियों से और सोचते हैं कि ये चीज़ दोबारा ना हो, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी चल पड़ती है। पर भविष्य और जो गुजर चुका है उसके बीच होता है हमारा वर्तमान, हमारा आज। हम उसे कैसे जी रहे हैं और आज का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसी विषय पर हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर 2660902 पर, भोपाल से बाहर के श्रोता साथी एसटीडी कोड 0755 लगाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो इंतज़ार है हमें आपके फ़ोन का। जी नमस्कार।
3: हाँ जी हेलो, फरमाइश में।
2: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
3: कोमल विश्वकर्मा बोल रहा है जी, तेंदू खड़ा से। कोमल विश्वकर्मा।
2: कोमल विश्वकर्मा जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में
3: जी,
2: है ना। आज देखिए, आज हमने एक विषय रखा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें जोड़कर रखते हैं आने वाले कल के लिए, और जो गुजरा हुआ हमारा कल है ना, जो हमारा पास्ट, उसको भी हम याद रखते हैं कि भाई ऐसा हुआ था तो कुछ गलतियां अगर हुई थी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच जो आपका वर्तमान है, आज है, उसको आप कैसे जीते हैं, उसका क्या महत्व है आपके जीवन में, आपके आज का वर्तमान का क्या महत्व है?
3: वर्तमान का
2: जी बताएंगे, अपनी जिंदगी में आप आज को कैसे शामिल करते हैं?
3: हम तो 65 साल की उम्र है हमारी जी।
2: जी जी,
3: यही है जो जल रहा है सो अपने घूमते रहते हैं जी।
2: जी जी जी, तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना आज भी खुशनुमा बनाएं
3: जी।
2: जो काम आप भविष्य, जो पिछले समय में या कहले आपने जो गुजरे हुए वक्त में नहीं कर पाए थे, आज उन कामों को करें
3: जी।
2: क्या सोचते हैं आप, क्या शौक है आपके?
3: अब हमको तो जो है जी थोड़ा बहुत करते रहते हैं बस।
2: जी जी जी,
3: काम करते हैं हम, शौक भी रखते हैं काम का
2: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, आपको देखिए शौक भी है ना।
3: हाँ
2: हाँ, तो आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं?
3: जी जी।
2: अच्छा, और आज में जीते हैं कि जो आज की खुशियां हैं उसको भी शामिल करेंगे?
3: हाँ जी,
2: शामिल करते हैं। आप कैसे शामिल करते हैं बताएं?
3: अब जी हम तो जैसे कोई कहीं जाता है आता, हम जब भी सब में शामिल रहते, हम सब खुशी में शामिल रहते सब लोग
2: जी। अपने घर के छोटे बच्चे बड़े, हाँ, सभी
3: बच्चे
2: के साथ
3: लोग नाती नतरा सबको,
2: हाँ, साथ जी जी जी, सबकी खुशियों में शामिल होते हैं, उन्हें अपने अनुभव बांटते हैं, है ना
3: जी, जी।
2: तो यही होती है हमारी जिंदगी, है ना जी। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका
1: जी।
0: जी
1: नमस्ते मैडम
0: नाम बताएं।
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था मैडम, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष कुमार राव जी है ना?
1: जी मैम जी।
0: तो स्वागत है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। आज देखिए हम आज बात कर रहे हैं, जैसे आज आपने हमें फोन लगाया है ना
1: जी।
0: आज लगाया तो इस जी, जी। आज का यानी कि वर्तमान का आपके जीवन में क्या मायने क्या स्थान है? जैसे जो बीत गया वो तो कल था, आने वाला भविष्य में जिसके बारे में आप जानते नहीं, लेकिन जो वर्तमान है वो आपके जीवन में क्या मायने रखता है?
1: वर्तमान की बात की जाए तो जीवन में मुस्कुराहट सबसे हमारा खुशी का गहना होता है, और वर्तमान में हमारे पास जो है वो सबसे खास होता है, हमारी माँ हमारी बहन भाई, और प्रेम से बढ़कर ये हमारा समाज हमारे लिए सबसे ऊपर उठ कर के है। इसलिए जो आज है उसमें खुश रहें, और जो गम है परेशानियाँ हैं उससे थोड़ा सा निजात पाने की कोशिश करें। अपनों का साथ रहेगा तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, इसी में हमारा जीवन समाहित होता है।
0: बिल्कुल है ना। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे भविष्य के लिए तो हम सभी सोच कर रखते हैं है ना
1: जी मैम।
0: तो, और जो पिछली जो गुजर चुका है उससे भी हम सबक लेते हैं कई बार, लेकिन आज को भूल जाते हैं है ना। वर्तमान में बहुत सारी खुशियां हैं, रिश्ते हैं, मित्र हैं, इन सब का साथ और स्नेह जरूरी है।
1: और
0: क्या
1: जो आज हमारे साथ है
0: जी
1: सबसे बड़ा योगदान उसका भी होता है, रेडियो है। रेडियो इतने ज्ञानवर्धक जानकारियों को लेकर
0: जी
1: आता
0: जी
1: है,
0: जी बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: हमारे साथ होता है निरंतर 5:55 से शुरुआत, रात को 11 से 11 बजे तक प्रसारण,
0: बिल्कुल
1: बहुत लगातार प्रसारण हमारे साथ बना रहता है
0: जी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का सेवा।
0: हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आप रेडियो से इस तरह जुड़े हुए हैं। आपने फोन किया हमें बहुत खुशी हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: दीदी मैं नवग्रह नगरी खरगोन से आपके निमित्त श्रोता मीना दसौंधी बोल रही। दीदी
0: मीना
1: दसौंधी।
0: अच्छा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। आज हमने एक छोटा सा विषय रखा हुआ है ना। क्या होता है, जैसे कि भविष्य के लिए हम बहुत कुछ जोड़ कर रखते हैं, है ना। आने वाले समय के लिए बहुत सारे सामान चीजें इकट्ठा करके रखते हैं कि भाई भविष्य में ये काम आ जाएगा। ये भी बहुत कहना चाहिए जरूरी बात है, आवश्यक है बात है ना। और जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसको भी हम याद करते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो गया था, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आज है आपका वर्तमान,
1: वर्तमान
0: उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, उसे आप अच्छी तरह से जी रही हैं?
1: बिल्कुल दीदी, वर्तमान में अपने के साथ जो हो रहा है वो बढ़िया है
0: जी, बिल्कुल।
1: और वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल। और आज में जो छोटी छोटी खुशियां हैं जिसको हम मनाना भूल जाते हैं, है ना, अपनों का साथ, बड़ों का साथ, और साथ ही साथ अपनी सेहत भी इम्पोर्टेंट है। कई बार हम अपनी सेहत को भी भूल जाते हैं।
1: नहीं दीदी, सेहत तो अपन अच्छी रहेगी तो अपन पूरे परिवार को संभाल सकेंगे और बड़ों को भी संभाल सकेंगे। सेहत का तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का, रहन सहन का, वातावरण का, सब कुछ।
0: बिल्कुल। और वो अपने को अपने आज में ही ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। उसको हम टाल नहीं सकते कि हाँ भाई भविष्य में हम देख लेंगे, है ना।
1: और भूतकाल में जो भी गया, उस अपने अगर परेशानियां उठाइए, कोई तकलीफ उठाइए, उनको याद मत करो। वो जो गया समय वो गया, जो आ रहा है वो समय पर ध्यान दो कि अब अच्छा आएगा।
0: बिल्कुल। और आज में हम बहुत सारे पलों को समाहित करें, खुशियां मनाएं, और जो चीज जरूरी है उसे करें, है ना।
1: छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखो तो अपने आप भविष्य अच्छा आएगा।
0: बिल्कुल। देखिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, है ना। और मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
1: बोल रही हैं,
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, आपका नाम बताएं।
1: आपसे एक बार अभी बात हुई थी, आपने फोन साहब नहीं किया था, तो इस बार अगर करना हो तो मैं बता दूं, उस बार
0: नहीं,
1: आपने
0: नहीं,
1: नहीं
0: नहीं
1: किया
0: सुनिए
1: मैडम जी।
0: हाँ देखिए सुनिए क्या होता है, हमारी एक समय सीमा होती है ना, कुल 58 मिनट का प्रोग्राम होता है, जिसमें जो जो पहले कॉल रहते हैं 8 है ना, उनको हमको शामिल करना पड़ता है, और एक समय सीमा निश्चित रहती है, इसलिए देखिए
1: हाँ तो
0: आज तो
1: मैडम जी
0: आपका
1: भी ये
0: शामिल
1: मान
0: हो
1: के
0: गया।
1: चलिए कि
0: हाँ
1: उस बार जो है तो मान लो इस बार तो काफी दिन हो गए, महीनों पूछ गए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं
0: नहीं
1: बता
0: नहीं
1: दूं
0: नहीं हमें आपसे कोई
1: कि
0: दिक्कत नहीं है, हमें आपसे कोई दिक्कत
1: तो
0: नहीं।
1: आज ये
0: आपका
1: बोल
0: नाम
1: रहा था कि
0: बताएं, नाम
1: कौन
0: बताएं।
1: आप, क्वेश्चन क्या है, मतलब किसके
0: नहीं,
1: बारे में
0: पहले
1: बात कर
0: पहले
1: रही।
0: आप अपना नाम बताएं।
1: हाँ मेरा नाम है मैडम जी, ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, इसी तरह जानती हैं मैडम
0: जी
1: जी। मैं
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: ही आपके कार्यक्रम का दीवाना हूँ, आकाशवाणी
0: अच्छा
1: भोपाल का।
0: अच्छा आज हमने जो विषय रखा है वो ये है कि
1: जी
0: जैसे भविष्य के लिए हम बहुत कुछ इकट्ठा करके रखते हैं
1: जी
0: आने
1: जी
0: वाले कल के लिए, और जो गुजरा हुआ पल है उसके बारे में भी सोचते हैं, है ना, कितना अच्छा
1: जी
0: समय
1: जी
0: था, या कुछ गलतियां हो गई हो तो भाई हम दोबारा ऐसा ना करेंगे, है ना, ऐसा
1: जी जी
0: सोचते हैं हम। लेकिन इन दोनों के बीच में आज वर्तमान आपके जीवन में क्या स्थान रखता है?
1: तो अब मैं बता दूं मैडम जी, पहले आपके लिए एक आध लाइन बोलना चाहता हूँ।
0: आज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं,
1: जी,
0: आज आप अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं।
1: अब मैडम जी मैं बता दूं कि अपनी जिंदगी के लिए जो है
0: जी
1: बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि हमने अभी तक तो बहुत कुछ किया और सब कुछ बना लिया।

0: करना, बागवानी करना, संगीत सुनना,
1: जी
0: आप उसे पूरा कर पाते हैं?
1: आप मैडम जी, मैं बता दूं कि अब जिंदगी में मनोरंजन के लिए जो है, क्योंकि हम तो रेडियो के बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, नियमित होता है, और मनोरंजन ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और इस सेहत से भी भरपूर कार्यक्रम होते हैं, और क्योंकि इन कार्यक्रमों के लिए मैं आपको बता दूं कि चाहे लाख नुकसान भी हो जाए, हम एक घंटे के लिए सारे काम को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि काम तो कभी रुक नहीं सकते हैं और काम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, जिंदगी में मरते दम तक, लेकिन हमें काम को ध्यान में रख करके कुछ काम रोकने पड़ते हैं, कुछ काम मनोरंजन के लिए हमें छोड़ना पड़ता है मैडम जी।
0: बहुत अच्छी बात। हाँ, तो थोड़ा सा वक्त, हाँ थोड़ा सा वक्त कहें तो आज के लिए भी हमें जीना चाहिए, है ना, अपने मित्रों से, अपनी खुशियों को, और जो हमें अच्छा लगता है उसे भी सुनना चाहिए, और जैसे आप बोल रहे हैं हमें गीत संगीत का शौक है, है ना
1: जी, और गीत संगीत का है, और टाइम निकाल करके मैडम जी बताएं, हम दोनों लोग जो हो सकता है साइड में करते रहते हैं, समय निकाल करके
0: जी
1: हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है,
0: बहुत अच्छा
1: की कृपा हो
0: जी जी जी जी बहुत अच्छा, सिलाई का काम भी आप कर रहे हैं, है ना, तो
1: जी जी, और मैडम जी ये भी करते हैं, और हम लोग ऑलराउंडर, हम और आपकी भाभी जी दोनों लोग जो है वो
0: बिल्कुल
1: सिलाई में हमारा भरपूर सहयोग करती हैं, शर्ट पैंट बनाती रहती है, और हम जो है शहर में कहीं मौका लगा यानी समय के मुताबिक कहीं भी फिट कर दो हम लोग काम करने के लिए।
0: ये बहुत अच्छी बात है, और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप काम करते हैं और साथ साथ समय भी निकालते हैं, है ना,
1: निकालते हैं, और बच्चों के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में निकल जाए, उनको अच्छी सलाह देते हैं,
0: अच्छी परवरिश,
1: मार्गदर्शन देते हैं,
0: बहुत बढ़िया,
1: बच्चियां भी ये
0: बिल्कुल
1: कर लिया है, लड़का जो है तो मिस्ट्री
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है वर्तमान के लिए। तो देखिए आपने फोन किया, हाँ आपने फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: चल ला।
1: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश
2: जी, आपका नाम बताएं।
1: जी मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
2: जी तो आपका स्वागत है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना जी। तो एक छोटा सा विषय हमने रखा हुआ है आज जिससे हम बातचीत करना चाहेंगे, है ना। ये विषय ये है कि जैसे कि वर्तमान में तो हम सभी अपना जीवन बिता रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम भविष्य के लिए सोचते हैं, सामान इकट्ठा करके रखते हैं, भविष्य में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जो हो चुका उसके बारे में भी सोचते हैं कि ऐसा अगर कोई गलती हुई तो सबक भी लेते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन इस बीच में वर्तमान को हम किस तरह जी रहे हैं, आप बताएंगे वर्तमान के क्या मायने हैं आपके जीवन में।
1: बीती हुई बातों को छोड़कर मैडम, जो आने वाला कल है, आने वाला जो कल है उसके बारे में सोचा तो बेहतर होता है। आगे जो भी कार्य करना है अपने वो कार्य अपन कर सकते हैं।
2: अच्छा, जैसे आप ये बताएं, जैसे वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं अपने परिवार के बीच, अपने मित्रों का साथ, कई हमारे स्कूल के मित्र होते हैं, कॉलेज के मित्र होते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। क्या उनको आप ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं वर्तमान में? हाँ जी,
1: जैसे आज हम जितने भी आज जो है गुरु के ज्ञान के बिना तो जीवन संभव नहीं होता है।
2: बिल्कुल, ये तो हमारे गुरु, हाँ बिल्कुल,
1: गुरु का स्थान हम सबसे ऊपर रखते हैं। जीवन में हम जिन लोगों से सीखते हैं उनमें केवल शिक्षक ही शामिल नहीं होते, कभी माँ का धैर्य, कभी पिता का अनुशासन, कभी मित्र की सलाह, कभी किसी छोटे बच्चे की सहजता
2: जी,
1: दोस्त और कभी अपनी ही गलतियां हमें
2: बहुत कुछ सिखाती हैं। जी
1: जीवन पाठ
2: हाँ
1: लिखा जाती है,
2: बिल्कुल,
1: जो कोई पुस्तक में नहीं लिखा होता।
2: बिल्कुल, और इन सब बातों का तो हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जैसे जो आज है हमारा वर्तमान है उसमें भी हमें अपनी सेहत का, अपनी रुचियों का, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? जैसे आज में हमें अपनी जीवन में जो कुछ, जैसे कि हमारी कुछ रुचि है, हमारे शौक है, उसको जिंदा रखना चाहिए कि नहीं?
1: नहीं, जिंदा

0: ऊपर रखना चाहिए और अपने जो भी कार्य है उसके लिए अपने लगन से करें।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जैसे आप मान लीजिए आपको किस चीज का शौक है, पेंटिंग करना, संगीत सुनना, क्या अच्छा लगता है आपको?
0: हाँ, समय समय पर सब करते, संगीत भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, तो इसके लिए समय निकालते हैं आप? हाँ, इसके लिए समय निकालते हैं आप
0: जी?
1: इसके लिए समय निकाल पाते हैं आप?
0: हाँ, निकाल लेते मैडम, ऐसा नहीं है, निकालते हैं बच्चों के
1: चलिए
0: निकालते हैं, अपने परिवार के लिए घूमने के लिए जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आज है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना। आज में हम अपने जीवन को जिए, भविष्य के लिए भी सोचें, लेकिन आज हमारे लिए खास स्थान रखता है ना। आपने फोन किया,
0: परिवार के साथ रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने फोन किया, अच्छी बातें हुई आपसे।
0: किस मैडम से बात हुई सर मेरी आज?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका। जी आपने फोन किया है बात आपकी गीत हमारे में, पहले आपका नाम बताएं।
1: नवदम प्रोग्राम से बोले सुहाग कोई से।
0: जी नाम बताएं।
1: छोटू मीना।
0: अच्छा कोई बात नहीं है कि हम आपको गाने नहीं सुनवाते, हम गाने समय समय पर आपको सुनाते हैं। आज आपने फोन किया है बात आपकी गीत हमारे में, इसमें एक विषय रखा गया है जिसमें हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अच्छा तो जैसे बताएं कि वर्तमान में आपका, जैसे आप भविष्य के लिए भी बहुत कुछ सोचती हैं है ना, समय सामान इकट्ठा करके रखते हैं हम कि भविष्य में ऐसा करेंगे, पैसे भी जोड़ कर रखते हैं हम, और ये बहुत अच्छी बात है ना। और गुजरा हुआ जो समय है उसको भी याद करते हैं कि भाई देखो ऐसी परेशानी बीते हुए वक्त में हुई थी है ना, उससे भी हम सबक लेते हैं कि ऐसा ना हो। पर इस बीच जो आज है हमारा वर्तमान, वो हमारे लिए क्या स्थान रखता है?
1: स्थान दे रखता है मैडम जी, आप काम धंधे करते हैं, काम धंधे के साथ साथ फिर वो हम सब सब की सोच के चलते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब जैसे आज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे कुछ वक्त आप निकाल पाती हैं अपनी सेहत के लिए? सेहत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत खास होती है, अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं आप?
1: रखते हैं सेहत का ध्यान, आवाज तकलीफ हो जाती दर मैडम जी, अस्पताल जाते डॉक्टर के घर जाते हैं,
0: समय समय पर चेकअप कराना भी जरूरी है। और इसके अलावा हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा हमारी जो रुचि होती है, हमारे जो शौक होते हैं, जैसे किसी का संगीत सुनना, खाना बनाना, बागबानी करना, ये सब शौक होते हैं ना, आपके क्या शौक हैं?
1: हमारा शौक तो एक ही है मैडम जी, हम सुबह से रेडियो चालू कर लेते हैं
0: जी,
1: हम 12-3 बजे तक हम रेडियो बंद करते
0: हैं।
1: शौक एक ही है
0: हमारा, बिल्कुल, मतलब गीत संगीत सुनना, रेडियो सुनना आपका शौक है?
1: बहुत शौक है
0: बिल्कुल।
1: तो हम कॉल लगाते ही रहते हैं, हमारा कॉल वही मुश्किल से लगता है।
0: नहीं आज लग गया
1: तो हमको लगता है तो हमको गाना नहीं सुनने मिलता।
0: नहीं आपको कल जरूर सुनने को मिलेगा गाना। देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद दीदी जी, नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मेरा नाम श्री चंद्र निषाद है दीदी।
0: श्री चंद
1: निषाद
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम जलालपुर, जिला बांदा, तहसील बदेरू, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे, एक विषय पर बात करेंगे आप हमसे
1: जी।
0: जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ कर रखते हैं अपने भविष्य के लिए, है ना, पैसा सामान जोड़ते हैं, है ना, और अच्छा भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुरे वक्त में ये चीज़ें काम भी आती हैं, हमें बचत भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ जो बीत चुका है उससे भी हम सबक लेते हैं, भाई कोई गलती हो गई तो हम उससे सबक लेते हैं, दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन इन दोनों के बीच में आपका वर्तमान भी होता है, आज होता है, तो आज आप मतलब वर्तमान का आपके जीवन में क्या स्थान है?
1: वर्तमान क्या क्या अच्छा है?
0: जैसे आप अपनी खुशियों को, अपने छोटी छोटी चीजों को, जैसे आपके जो शौक हैं, रुचि हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ समय बिता पाते हैं आज?
1: कुछ कम समय लगता है ऐसी चीजों में, ज्यादा करके बस वही जिंदगी भाग दौड़ की बनी है।
0: हाँ, वही हम कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो जिंदगी है जिसमें हम सभी भाग रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि आज को हम भूल जा रहे हैं, आज में हमें अपने परिवार का, मित्रों का, अपनी छोटी छोटी जो शौक हैं, रुचि हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए।
1: रखना तो चाहिए दीदी जी,
0: इससे हमारी जिंदगी खुशनुमा होगी और अगर अच्छी होगी तो हम दुगने उत्साह के साथ फिर से काम में जुट जाएंगे।
1: जी दीदी जी।
0: तो फिर आपने क्या सोचा है, आप अपनी रुचि, शौक, अपने मित्र, अपने परिवार के साथ को कायम रखेंगे?
1: जी, हम तो कुछ समय लगाकर ध्यान रख लेते हैं जी।
0: जी जी जी जी, हमें खुशी हुई है जानकर और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। जो गुजर गया वो कल था, जो आने वाला है वो कल होगा, पर जो आज है वो हम सबका वर्तमान है। अपने जीवन में आज की खुशी मौके को शामिल करिए और जिंदगी का भरपूर आनंद उठाइए। तो अब दीजिए अनुमति आपके रेडियो मित्र श्वेता को। नमस्कार।
1: फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक प्रदेश की दतिया सीट पर 12.94% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दूर संचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टर्स और संभागायुक्तों के साथ इस संबंध में बैठक की। श्री वर्णवाल ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान सभी विभागों की लंबित समस्याओं का 100% निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागी बनेंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए यह महोत्सव विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में इंदौर पुलिस और बड़वानी पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लंदन नॉवल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए इनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 31 जुलाई को अंतिम दिन है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि विद्यार्थी समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार, वक्त आ गया है पत्रों द्वारा आपकी भेजी गई फरमाइश को पूरा करने का। तो चलिए सुनते हैं 100 डेज फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में गीत लिखा है दिलीप ताहिर ने, संगीत है राम लक्ष्मण का। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनामिका और तन्मय गजभिये की। साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बॉस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और पूरा इनका परिवार। और ये फरमाइश हमें मिली है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान की। तो आइए सुनते हैं 100 डेज फिल्म का गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में दिलीप ताहिर के बोल है, आवाज़ लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम की।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है रविंद्र जैन ने और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मिली। इस फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव, मुन्ना खान, बारेलाल, सुदामा सेन, सुमेर पटेल, अवधेश कुमार दुबे, संतोष सिंह ठाकुर, इसी गीत को पसंद किया है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, और ये हमारे श्रोता है बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेकवार, श्रीमती विनीता रेकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनुरथ हल्ले और ऋषि रेकवार बंडा, और साथ ही साथ लल्लू भाई भी हैं।

इस मस्ती भरे गीत के बाद आइए अब सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का गीत, किशोर कुमार, एस जानकी, जावेद जाफरी की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनना चाहा है राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, मस्मिता,

प्रिय आवाज़ों में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत को सुनना चाहा है राजपुर से घिसु दिलवारे लक्ष्मी।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत और इसमें शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं के पत्र। ये है मुल्ताई जिला बैतूल से पूरन बजाज लखन और आप है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और महेशवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीना जी, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर। आप सभी सुनना चाहते हैं अग्नि साक्षी फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

अग्निसाक्षी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में गीत लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय है एक अंतराल का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

0: आदेश के अनुसार बिना अनुमति ऐसे आयोजनों का संचालन, भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियां, हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री का प्रदर्शन या उपयोग तथा सार्वजनिक अथवा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 15 जुलाई 2026 से आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 15वीं कड़ी।
3: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 15वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर जा रहे हैं। मार्ग में देवी मणि भद्रा का तांत्रिक क्षेत्र पड़ता है। राजा उस क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं। अब आगे।

0: राजा भर्तृहरि देवी मणिभद्रा तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा। वो जोर जोर से पुकारते हैं,
1: कोई है, कोई है, अरे कोई है जो मुझे देवी मणिभद्रा तक पहुंचा दे।
2: आज भी वृकवन की ही भांति किसी वृक्ष पर चढ़कर रात काटनी होगी, उजाले की प्रतीक्षा में।
3: कौन हो, कहां से आए हो, क्यों मिलना चाहते हो? ठहरो, मैं आती हूं।
2: मेरे पास देवी के लिए भेजा गया उपहार है, अन्य प्रश्नों के उत्तर मैं देवी को ही दूंगा।
3: माता मणिभद्रा से भेंट चाहता है तू?
2: हाँ।
3: उनके लिए क्या उपहार लाया है?
2: तुम भी भर मदिरा।
3: उपहार किसने भेजा है?
2: माधाग्राम के मधु विक्रेता मधुचंद्र ने।
3: ला, ये तुम भी मुझे दे।
2: नहीं, इसे केवल देवी मणिभद्रा को ही सौंपूंगा। तुम देवी मणिभद्रा तो नहीं हो?
3: और मैं छीन लूं तो?
2: मैं प्रतिरोध करूंगा, तुम उसे छीन नहीं सकती।
3: तू साहस होगा रे मानव, तू जानता है नहीं है मेरी शक्ति?
2: अपनी शक्ति जानता हूं, तुमसे विवाद नहीं करना चाहता। अस्तु, कृपा करके देवी मणिभद्रा तक पहुंचने का मार्ग बता दे।

0: सर्वथा उपयुक्त है प्रति अनुष्ठान के हेतु सर्वथा योग्य सुंदर सुगठित वांछनीय आज मेरा भैरव तू बनेगा।
1: भर्तरी ने देखा कटी से ऊपर निर्वसन बाल फैलाए सिंदूर पोते मद में चूर भैरवी अपने उन्माद का भय उत्पन्न करती आलिंगन के लिए उद्दत मुद्रा में उनकी ओर बढ़ रही है।
2: माते, पहले मुझे देवी मणिभद्रा के पास पहुंचा दे, तत्पश्चात तुम्हारी अथवा देवी मणिभद्रा की जो भी जैसी भी आज्ञा होगी मुझे शिरोधारी होगी।
0: धूर्त है रे तू मनुष्य, धूर्त धूर्त। माता कहकर भरमाना चाहता है। मूर्ख, मैं शक्ति हूं, अनेक रूप है मेरे, उनमें से एक माँ का भी है। आज तेरी बात ही सही, अपनी आधीश्वरी से आज मैं तुझे मांग लूंगी। आ मेरे पीछे पीछे आ, आ मेरे पीछे।
1: स्त्री अपेक्षाकृत शांत हो जाती है।
0: मुझे प्यास लग रही है, तेरे पास मदिरा से भरी तुम भी है ना, उसे पीने के लिए मुझे दे देना।
2: माते, मैं निवेदन कर चुका हूँ कि ये थाती है किसी की, जिसे ज्यों का त्यों सौंपना मेरा दायित्व मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हारे सामने ही देवी मणिभद्रा को दूंगा, फिर चाहे तुम पूरी तुम भी ले लेना। हाँ, मेरे पास अपनी दो रोटियां हैं, चाहो तो उन्हें ले लो।
1: चले जा रहे थे वे। राजा भर्तरी को कभी कभी आभास होता कि जैसे वहां बिखरे हुए मूर्ति शिल्प जीवंत हो गए हैं। कुछ देर में प्रकाश स्पष्ट होने लगा। पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे अनेक अग्निकुंड, कुछ बुझे हुए और कुछ में दहकते हुए कोयले, लपटे निकलती हुई। भैरवी ने किलकारी मारी। कुंडों के लाल पीले प्रकाश में भर्तरी को कुंडों के आसपास प्रेतों की भांति अदृश्य होती कुछ परछाइयां दिखाई दी। वृक्ष के नीचे एक विशाल शिला पर एक अर्धनग्न स्त्री इन आते हुए लोगों पर टकटकी जमाए हुए बैठी थी।
0: यही है हमारी आदिश्वरी मणिभद्रा, जाओ।
2: महामयी देवी मणिभद्रा की जय हो, जय हो।
3: इस समय इस साधना क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है, तुम कैसे आ पहुंचे?
2: मुझे चंद्रपुर का छोटा मार्ग चुनकर शीघ्र ही वहां पहुंचना था, आपके दर्शन भी पाना चाहता था।
3: जानते हो, साधना में व्यवधान का दंड प्राण देकर चुकाना पड़ता है। कोई क्रुद्ध भैरव या भैरवी तुम्हें अभी ही त्रिशूल अथवा खांडे से भेद सकता है। मेरे समक्ष होकर भी तुम निरापद नहीं हो। इसके पूर्व कि हमारा कोप टूटे, शीघ्र बताओ कि तुम कौन हो।
2: ये तुम भी माधा के मधु विक्रेता मधुचंद्र ने आपके लिए भेजी है, कृपया स्वीकार करें। मैं देवी के सम्मुख मिथ्या भाषण का दोषी नहीं होना चाहता, पर अभी अपना नाम और कुल भी प्रकट नहीं करना चाहता, केवल रात्रि विश्राम की अनुमति चाहता हूं। प्रातः होते ही मैं अपने मार्ग पर निकल जाऊंगा।
3: तुझे भय नहीं है क्या?
2: भय तो छीने जाने का होता है देवी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे छीना जा सके, केवल प्राण है, और प्राणों का भी मोह अब बचा नहीं है।
3: अंगोछे में क्या बांध रखा है तूने?
2: दो रोटियां और मुट्ठी भर चबेना।
3: यहाँ आकर दिखा। इसमें तो घरेलू महक है, एक रोटी ले लूं।
2: जी।
3: हाँ, अब तू निर्भय होकर बैठ जा पति। मेरी बहन मंजरी के हाथों का स्वाद है तेरी इन रोटी में। माधा के बाहर के खेतों में रुका था क्या?
2: हाँ, वही एक कृषिका ने स्नेह पूर्वक ये रोटियां मार्ग के लिए बांध दी थी।
3: बस समझ ले कि ये रोटियां तेरा सुरक्षा कवच बन गई है पथिक। अब तुझे कोई भय नहीं। आह, मेरी बहन मंजरी। सुन ले पथिक, भैरव और भैरवियां तुझ पर कुपित हैं, क्योंकि आज चक्र साधना की रात अवांछित प्रवेश करके तूने विघ्न उपस्थित किया है। साधना में विघ्न डालना अक्षम्य अपराध है। तेरे आने के पहले वो सब के सब आनंद के आनंद में थे, और ध्यान भंग होते ही वो देह के आवेग में आ पहुंचे हैं। अपनी आंखों से देख राजा भर्तरी, कि देह के आवेग में विवेक कैसे पीछे छूट जाता है।
2: देवी,
3: वज्र भैरव का संकेत मिल चुका था कि तुम यहां होकर निकलो तो मैं तुम्हारा सत्कार करूं, साधना का स्वरूप तुम्हें दिखाऊं। तुम उज्जैनी के नरेश भर्तरी ही हो सकते हो। साधारण मनुष्य तो क्षेत्र की भयावहता के भास से अपने प्राण ही छोड़ देता। तुम उज्जैनी के नरेशी हो ना?
2: माँ, अभी केवल भर्तृहरि हूं।
3: इतना ही पर्याप्त है। नीला, नीला
0: देवी।
3: नीलघंटा, तुम तो चक्र साधना में थी ना?
0: महाभद्रा, तुम यदि अनुमति दे दो तो मैं इसे साधन भैरव बना लूं।
3: पहले तुम इनके पाद्य अर्चन अर्घ आचमन के लिए जल की व्यवस्था करो। तदुपरांत यदि ये स्वीकार करें तो तुम्हारे साधन भैरव हो सकते हैं। आओ नरेश, इस प्रस्तर शिला पर आसन ग्रहण करो। तुम्हें हमारा आचरण देखकर वितृष्णा हो रही होगी।
2: नहीं देवी।
3: वस्तुतः हमारे साधना मार्ग का पहला अनुशासन है कि सामान्य जन से पार्थक्य बना रहे, इसलिए हम किंचित घृणा, जिज्ञासा और भय का वातावरण खड़ा कर देते हैं।
2: जिज्ञासु हूँ देवी, और भी कुछ समझना चाहता हूँ।
3: वो वहाँ जो एकादश हवन कुंड देख रहे हो ना, एकादश युगल वहाँ बैठेंगे। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कमेंद्रिय और एक मन चक्र साधना में आज पांच भैरव और छह भैरवियां भाग ले रही हैं। साधना के लिए यंत्र के आसपास पांच कुंड जागृत किए गए हैं। यंत्र महाशक्ति का प्रतीक है, कुल का प्रतीक है। उज्जैनी नरेश, ये एक अनुभव क्रीड़ा है। अपने ही शरीर में पुरुष और नारी युगल की स्थिति के साथ पूर्णता की प्रतीति के निकट पहुंचने का उपक्रम है। कुलाकुल के अभेद का चिरंतन आनंद जहां प्रवाहमान है। प्रवाहमान अर्थात प्रतिक्षण नूतन आनंद।
0: जल प्रस्तुत है।
3: ठीक है, अब तुम जाओ नीला।
0: बहुत प्यास है भद्रे, उद्विग्नता है।
3: प्यास को बढ़ने दो, उद्विग्नता के साथ खेलो। एक सीमांत पर ये स्वयं प्रशमित हो जाएंगी। जल आ गया है राजन, हाथ पांव धोकर आचमन करें। शुभ संयोग में तुम आज यहां पहुंचे हो। आज उपासना की रात है। महाभैरव की इच्छा है कि तुम साधना के साक्षी बनो।
1: भर्तृहरि ने जल पात्रों को छुआ। ये शमशान से लाए हुए घड़े थे जिन्हें भरकर नीलघंटा भर्तृहरि के लिए पानी लाई थी। ये घड़े थे मैले कुचेले बदरंग। भर्तृहरि को घिन हो आई। यहाँ तो मलिनता और दूषण ही केवल सामने है।
3: इस साधना के प्रथम चरण में शुचि और अशुचि के भेद से मन को मुक्त करना पड़ता है। भर्तृहरि भर्तृहरि, यहाँ कुछ भी अग्राह्य नहीं है। एतदर्थ बहिरंग उपासना से शरीर के स्वभाव और गुण का अतिक्रमण कर अभाव से महाभाव तक की यात्रा करने वाला ही भैरव बन पाता है। जल का स्वभाव निर्मलता है, मलिनता उसे अन्य से मिलती है। पियो भर्तृहरि, आनंद का अनुभव करो और पियो। प्यास देह का भाव है, देहजन्य प्यास निहित पदार्थ से ही शामित होगी, अन्यथा तुम्हारी आत्मा और चित्त की व्याकुलता बनी ही रहेगी। जल की कामना तुम्हें सहज प्रेक्षक न बनने देगी।
1: मणिभद्रा पाषाण शिला से उतरकर भर्तृहरि के सामने खड़ी हो गई। मुक्त वसना नारी देह को सामने पाकर राजा भर्तृहरि की आंखें संकोच से बंद हो गईं। तभी मणिभद्रा ने ललकारा,
3: अपने चित्त को सहज कर उज्जैनी नरेश, और स्मरण कर तूने कभी अपनी माँ को भी निर्वसन देखा होगा। उसके स्तनों से खेलता रहा होगा मूर्ख। ये सभी भैरव और भैरवियां इस समय यौवन की उल्लासित अवस्था में हैं। तेरे आने से पूर्व यह आरंभ और तरुण अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं। प्रेक्षक बनने के लिए तुम्हें भी आरंभ उल्लास तक आना पड़ेगा। मेरा अनुगमन कर राजा भर्तृहरि। ये ले तेरी लाई हुई तुम्बी और पी ले। तुम अब साधना भूमि के प्रेक्षक हो, हम सबके अतिथि हो। महाभैरव के प्रसाद की अवहेलना करेगा तो भैरव के ये गण तुझ पर टूट पड़ेंगे। इन क्रुद्ध आंखों को देख जो झाड़ियों से झांक रही हैं। हिंसक निर्दयी आक्रामक और विस्फारित आंखें।
2: देवी, आप जानती हैं कि मद्य के आस्वाद से मैं अनजान नहीं हूं। प्रतिदिन सेवन करने वाले अवंती नरेश को उस दिन से इसकी आवश्यकता ही नहीं रही जब मैंने राज महालय छोड़ा। मांसाहारी वन श्वानों का भय मुझे नहीं है, क्योंकि उस लकुटी के आलंबन पर मैं यहां तक निरापद चला आया हूं। किंतु तुमने स्वयं ही मुझे अपना अतिथि चुना है, अतः मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो इस क्षेत्र की मर्यादा के विरुद्ध हो। लाओ प्रसाद दो माते।
3: बस, आज की साधना बस यहीं तक, इसी चतुर्थ प्रौढ़ उल्लास तक। पुत्रों और पुत्रियों, इसके पश्चात ये भूमि वन समय और जो कुछ भी उपलब्ध हो वो सब तुम्हारा है। शक्ति के आलंबन से इसी काया में मोक्ष पाने तक उद्यम करो और स्मरण रखो कि जब तक ये काया है तभी तक ये संसार नित्य है और काया का इच्छित है सुख। समझ लो कि साधना की इस घड़ी में तुम्हारे सिवा यहाँ अन्य कोई उपस्थित नहीं है। और भर्तरी तुम भी जान लो, इस महासाधना का प्रारंभ मध्य से होता है और अंत मैथुन से। मैथुन वो है जिसमें नारी में शक्ति का आरोपण होता है, जिनसे भौतिक और शारीरिक सुख की क्षणिक अनुभूति अपरिमेय आनंद में परिवर्तित हो जाती है।
2: मेरा मदिरा पात्र रिक्त हो गया है।
3: मैं उसे भर देती हूँ। किंतु भर्तरी, साधना में संयम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चरणामृत से प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार मध्य सेवन से संज्ञाहीनता की स्थिति में पहुंचना साधना नहीं है, ये तो पशुता है।
2: कुछ खाने को मिलेगा माते?
3: खोज लें, यत्र तत्र ये मांस पिंड बिखरे पड़े हैं। अरे, तेरा लाया हुआ रोटी साग भी तो है।
2: इसमें से तुम भी खा लो माते।
3: नहीं रे, मुझे आहार की क्या कमी है।
1: प्रातः काल का सूर्य रात्रि की कालिमा को चीर कर चारों दिशाओं में प्रकाश भर देता है।
4: सृजात्येष जगत् कृत्स्नं पाति संहरते तथा कालो भूत्वा महादेवः।

0: केवलो निष्कलः शिवः।
1: इस पद का अर्थ क्या है भर्तरी?
2: भर्तरी सुन नहीं पाए, वो देख रहे थे विशाल पीपल के नीचे हवन कुंडों के आसपास बिखरी और उड़ती हुई पत्तलें, टूटे हुए मृद पात्र, हव्यशेष, अधजली समीधाएं इधर उधर बिखरे हुए थे। विगत रात्रि के स्मृति चिन्ह यहां वहां। भर्तरी को लगा एक सपना था जो बीत गया। मदिरा का ये वस्तु जगत की झिलमिलाती ओट देने वाला प्रभाव कहीं अपने लिए अतिरिक्त सुख की इच्छा ही तो जुगुप्सा का संसार नहीं रचती थी।
3: सुना नहीं तुमने नरेश? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या सोच रहे हो?
4: क्षमा करें माते, सचमुच ही मेरा चित्त कहीं और था। कुछ पूछा आपने?
3: तुम कोई पद गुनगुना रहे थे, इसका अर्थ क्या है?
4: वो महाकाल महादेव की स्तुति है माते। केवल वही निष्कल महादेव शिव काल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, पोषण और रक्षा करते हैं और उसका संहार करते हैं।
3: ये तो परम गुरु आदि योगी शिव का पहले से ही जाना और माना हुआ तत्व है। मैंने सोचा कि कोई नई बात है।
4: एक पुरातन सत्य ही नए नए रूप में आकर सृष्टि के सूत्र साधता है देवी, युग के अनुसार उसकी व्याख्या भी नई हो जाती है। अच्छा माते, वे सारे भैरव भैरवियां कहाँ चले गए? ये सुनसान क्यों है?
3: साधक को भी देह धर्म निभाना पड़ता है। शरीर ही साधना का माध्यम है। शरीर के धर्म का अतिक्रमण तभी संभव है जब शरीर बना रहे। आहार विहार दोनों शरीर के धर्म हैं। इन्हें साध लेना ही साधना है। भैरव और भैरवियां यही कर रहे होंगे। संभव है कि राह में तुम्हें कोई मिल जाए, उससे वार्तालाप मत करना, उसके निकट रुकना भी मत। उनमें से कोई तुम पर आक्रमण कर सकता है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें त्रिपद तक पहुंचा देती हूं।
4: माते, मुझे तो इसी अरण्य मार्ग से जाना है ताकि आज ही चंद्रपुर पहुंच सकूं। त्रिपथ तो पीछे छोड़ आया हूं।
3: चंद्रपुर? बड़ी उद्दाम इच्छा है तेरी जल्दी से जल्दी चंद्रपुर पहुंचने की।
4: उसी के लिए यात्रा की है।
3: जानती हूं, किंतु ये मार्ग तो अत्यंत दुर्गम है। सीधे खड़े आकाश को चूमते हुए पर्वतों के बीच द्रुतवाहिनी एक सकरी नदी है, योजन भर दूर, जिसमें अनगिनत मकर और घड़ियाल भरे हैं। तत्पश्चात योजन भर गहन कांतार है, हिंस वन्य जीवों से भरा हुआ है। जो इस मार्ग से जाता है उनका आहार बनता है। लोकापवाद है कि मध्य मास मैथुन प्रिय साधक वहां उसे अपना आखेट बना लेते हैं। इस लोकापवाद का खंडन साधक नहीं करते। हाँ, मैं तुम्हें जलग मार्ग से पार करा सकती हूँ, वो मेरे पास है। आगे का मार्ग तुम्ही को पूरा करना होगा। संसार में नाना प्रकार की शक्तियां हैं, साधक लंबी वय में भी उन्हें सिद्ध नहीं कर पाते हैं। महाभैरव की जो इच्छा, चलो वाम दिशा के मार्ग से ही चलना होगा। इस मार्ग पर सदैव बाधा है, अनिश्चितता है, आशंका है, किंतु ये सब कहां नहीं है।

मार्ग में ऊंचे नुकीले धार वाले पत्थर हैं। चल पड़े हैं राजा भर्तरी चारों मित्रा के चंद्रपुर की ओर। मार्ग कठिन है, चारों ओर जंगल और पहाड़ हैं। चढ़ाई ऐसी कि जरा सी चूक का अर्थ होता तत्काल फिसलन और अंततः गहराई में गिरकर मृत्यु। यहाँ वहाँ बानर भालुओं के झुंड चौंककर इन पथिकों को देखते हैं, गुर्राते हुए आक्रामक होते हैं। तभी मणिभद्रा की किलकारी सुनकर अपने स्थान पर ठिठक कर रह जाते हैं और भर्तरी के पांव आगे बढ़ जाते हैं।

0: हमें इस नदी को पार करना है भर्तरी।
1: माते, इस भयानक नदी को, मगरमच्छों से भरी इस नदी को, जहां किनारे पर यहां वहां घड़ियालों के बीच से राह कैसे सुगम होगी माते?
2: भर्तरी के कातर शब्द सुनकर मणिभद्रा तीव्र अट्टहास करती है।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 15वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चित्रा भादुड़ी, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, नील घंटा बद्रुन्निसा और मणिभद्रा रंजना तिवारी। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया। संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 15वां भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ इस संबंध में बैठक की। श्री बर्णवाल ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान सभी विभागों की लंबित समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में इंदौर पुलिस और बड़वानी पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए इनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

महिला सभा कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, आज का महिला सभा कार्यक्रम समर्पित है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस को। साथ ही हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण के उपाय, इस विषय पर भी। सखियों, विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मानव तस्करी जैसे अमानवीय अपराध के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सके और पीड़ितों के अधिकारों, उनके पुनर्वास के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जा सके। सखियों, प्रत्येक मनुष्य को सम्मानपूर्वक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध के जाल में फंस जाते हैं। परिणाम स्वरूप लालच, छल, झूठे वादों और मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को बंधुआ मजदूरी, यौन उत्पीड़न और दूसरे अमानवीय कृत्य में धकेल दिया जाता है। सखियों, मानव तस्करी किसी व्यक्ति का अवैध स्थानांतरण नहीं है, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसके मूलभूत अधिकारों का हनन है। झूठे रोजगार, बेहतर भविष्य, विवाह, शिक्षा या विदेश भेजने के नाम पर लोगों को बहला फुसला कर उनका शोषण करना भी मानव तस्करी का हिस्सा हो सकता है। सखियों, यह अपराध किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इसमें महिलाएं, बच्चे, किशोर, प्रवासी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर लोग अक्सर इसके निशाने पर होते हैं। सखियों, मानव तस्करी केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक चेतना की भी परीक्षा है। जब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित होता है, कोई व्यक्ति झूठे रोजगार के बहाने फंसा दिया जाता है, कोई परिवार आर्थिक मजबूरी में ठगी का शिकार हो जाता है, तब समाज के प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सखियों, मानव तस्करी रोकने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अनजान लोगों के झूठे प्रलोभन से सावधान रहने की सबसे अधिक आवश्यकता है। सुरक्षित रोजगार के संसाधनों की जानकारी रखना, बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस या संबंधित प्रशासन के विभाग को देना। सखियों, विशेष रूप से हमें बच्चों को बाल श्रम और मानव तस्करी के खतरों के बारे में उनकी उम्र के अनुसार समझाना बहुत जरूरी है। सखियों, बच्चों के साथ शोषण, तस्करी या किसी संकट की आशंका होने पर 1098-1098 पर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति या मानव तस्करी से जुड़ी संदिग्ध स्थिति की जानकारी देने के लिए 112 यानी 112 पर सूचना दी जा सकती है, या फिर पास के ही पुलिस थाने में भी सूचना दे सकते हैं। सखियों, हमारे ये छोटे छोटे कदम अनेक मासूम और मजबूरों की जिंदगी को बचा सकते हैं। इसे रोकने के लिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। सखियों, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों को समर्पित एक प्रेरणादायक गीत सुनते हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मेरी जंग से।

0: सखियों, विचारों के आदान प्रदान से आपसी विश्वास मजबूत होता है और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दिशा में हमारा भी हमेशा प्रयास होता है। इसी प्रयास की कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्रुति सचदेवा। आपको जानकारी देंगी भेंट वार्ता के माध्यम से, ये अपने विचार साझा करेंगी आपके साथ। विषय है महिलाओं के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार। आपसे बातचीत करेंगी अल्पना कपूर। तो सखियों, सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोता बहनों, महिलाएं अपने घर और परिवार की धुरी होती हैं, जिसके चारों तरफ हमारा पूरा परिवार घूमता रहता है। यदि हम कामकाजी हैं तो भी, और यदि हम गृहिणी हैं तो भी, हमारे परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। इन सभी जिम्मेदारियों का हम अच्छी तरह निर्वाह तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हों, तभी हम अपने घर के सभी सदस्यों को भी स्वस्थ रख सकेंगे। तो बहनों, इसके लिए जरूरी है कि घर परिवार के साथ साथ हमारा भोजन भी पौष्टिक हो। श्रुति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संतुलित भोजन क्या है।
2: संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स।
1: आप हमें ये अलग अलग बताइए कि ये सारी जो तत्व हैं, ये हमें किन किन खाद्य सामग्री से मिलते हैं।
2: कार्बोहाइड्रेट आपको चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मकई, जिसे कॉर्न भी कहते हैं, इसके अलावा सभी जड़दार सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद आदि से प्राप्त होता है। फलों में जैसे है केला, चीकू, आम। सूखे फलों में है काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब में काफी मात्रा में पाया जाता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए पूरे दिन में 70% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ऐसे ही प्रोटीन हमें प्राप्त होता है सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, दूध, पनीर, मीट, एग, फिश, दालें। ये हमें त्वचा, बाल, हड्डियों, दांत की ग्रोथ के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। फैट मतलब ऑयल, जो कि हमें घी, मक्खन, दूध, दूध से बने पदार्थ, इन सब चीजों से प्राप्त होता है। और मिनरल्स खनिज तत्व जो है, हमारे वजन के हिसाब से हमें 3-4% मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, इन सब की जरूरत हमें रोज 100 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है
1: जी।
2: ऐसे ही आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब की जरूरत भी हमें शरीर में बहुत पड़ती है। जैसे कैल्शियम हमें दूध, दही, दूध से बने पदार्थ जैसे दूध, पनीर, चीज, इन सब से प्राप्त होता है। हरी सब्जियों में सूखा साग है जैसे पालक, मेथी आदि से प्राप्त होता है
1: जी।
2: आयरन जैसे हमें सूखे फल से, पालक से, अनार, मीट, इन सब चीजों से हमें आयरन प्राप्त होता है। ऐसे ही विटामिन, विटामिन हमें फलों से प्राप्त होते हैं।
1: तो महिलाओं में संतुलित भोजन क्यों जरूरी है।
2: महिलाओं को घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को देखना होता है, इन सबको करते हुए महिलाएं अपने आप में ध्यान नहीं देती है। इसलिए महिलाओं को अपने भोजन में दूध, दही, हरी सब्जियां, सलाद, अंकुरित दालें, ये सब जरूर शामिल करें। संतुलित भोजन ना सिर्फ गर्भावस्था में बल्कि गर्भावस्था शुरू होने से पहले भी आवश्यक है
1: जी।
2: जो औरत शुरू से ही संतुलित भोजन लेती है और गर्भधारण के समय भी संतुलित खाना खाती है, तो इससे स्वस्थ बच्चे की संभावना बढ़ जाती है।
1: तो संतुलित भोजन के अंग कौन कौन से हैं?
2: कामकाजी महिलाओं के आहार में सभी पौष्टिक तत्व होना चाहिए है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, और कितने आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। साथ ही साथ कैलोरी की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए, जिससे उन्हें काम करने में थकान महसूस ना हो। जैसे बीच बीच में फ्रूट जूस पीते रहें, कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो ज्यादा अच्छा है। नींबू पानी ले सकते हैं जो कि आपको तरोताजा बनाए रखती है।
1: अब जब एक महिला गर्भ धारण करती है, उस समय उसके भोजन में किन किन तत्वों का किस किस मात्रा में और किस किस स्टेज में शामिल होना आवश्यक है।
2: गर्भावस्था जो कि काफी महत्वपूर्ण है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को साथ ही साथ उनके परिवार वालों को उनके भोजन का ध्यान रखना चाहिए। दिन भर का एक मेन्यू प्लान करना चाहिए कि सुबह एक ग्लास नींबू पानी लें, साथ में आप भीगे हुए बादाम खा सकते हैं
1: जी।
2: नाश्ते में अंकुरित की हुई दालें खाएं, अंकुरित चने भी उसमें मिक्स करके खा सकते हैं
1: जी।
2: ऐसे 2-3 दालों को अंकुरित करके उसे अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें, और साथ में एक ग्लास दूध लें और एक कोई भी मौसमी फल आप जरूर खाएं। ऐसे दोपहर का खाना जो है, सूप लें, टमाटर पालक का एक सूप ले सकते हैं
1: जी।
2: 2 रोटी लें, 1 कटोरी दाल, एक कटोरी हरी सब्जी, एक कटोरी चावल, एक कटोरी दही, सलाद, एक गिलास छाछ और कोई भी मौसमी एक फल जरूर खाएं खाना खाने के बाद। ऐसी शाम को एक कप चाय या फिर एक गिलास दूध, साथ में वेजिटेबल सैंडविच या फिर भुनी हुई मूंगफली, इस तरह से आप ले सकते हैं। ऐसे रात का खाना दो रोटी, आप सूप भी ले सकते हैं इसके पहले, जैसे चिकन सूप है, या फिर चिकन सूप नहीं लेते हैं जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए आप जैसे वेजिटेबल सूप होता है, टमाटर पालक और भी मिक्स वेजिटेबल सब्जियां मिक्स करके आप वो ले सकते हैं उसका सूप। और दो रोटी, एक कटोरी दाल, दाल पालक, एक कटोरी चावल, अंकुरित सैलेड, एक फल
1: जी,
2: और ऐसे सोने से पहले एक ग्लास दूध जरूर लें। इस व्यस्त जीवन में महिलाएं अपना खाना पीना में ध्यान नहीं देती हैं, बच्चों पे ध्यान देती हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है, साथ ही साथ बच्चों के साथ ही साथ अपने पर भी ध्यान दें तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। जैसे अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाएं, फल खाएं, सूप जरूर पिएं, जूस लें, जूस से ज्यादा अच्छा है लेकिन मैं कहूंगी कि फल जरूर खाएं, फल आपके लिए रेशेदार होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन आपका अच्छा बना रहेगा। तो इस तरह से आप अपने लिए ध्यान जरूर करें।
1: कहते हैं कैल्शियम और आयरन की,
2: कैल्शियम और आयरन तो मैं 35-30 के 30+ में अपनी मेडिसिन ये वाली स्टार्ट कर देना चाहिए कि ये आगे जाके ये प्रॉब्लम आए ना, बाकी खाने में अपना जरूर ध्यान दे। लेकिन
1: इसके अतिरिक्त हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं उनके भोजन में किन किन बातों का एक माँ को ध्यान रखना चाहिए।
2: स्कूल जाने वाली लड़कियों के भोजन में वह सभी पौष्टिक तत्व होना चाहिए जिनका जिक्र हम पहले भी किए हैं, जैसे कि प्रोटीन, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें थोड़े से ही इसमें कैलोरी प्रदान करता है, जैसे एक चम्मच यानी 5 ग्राम शक्कर में 20 कैलोरी मिलती है। सूखे फल खाएं जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, इसके अलावा फलों में केला, चीकू, अंगूर, इसमें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे शरीर में जाकर कैलोरी में परिवर्तित हो जाता है। फैट भी ले सकते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, चीज, बटर, ये सब भी जरूर खाएं, लेकिन हर चीज की मात्रा ना कम हो ना ज्यादा हो, इसलिए बराबर मात्रा में खाएं। जंक फूड ना खाएं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की जगह फ्रूट जूस लें जो आपको फायदा करेगा, कैलोरीज देगा, साथ ही साथ विटामिन सी भी प्राप्त होगा।
1: तो ये तो हुई एक बढ़ती उम्र की लड़कियों की बात। एक सामान्य परिवार क्या अपने भोजन को इस तरह से संतुलित रख सकता है, क्या ये सारी चीजें उनके बजट में शामिल हो सकती हैं? तो वो व्यक्ति कैसे अपने बजट में इन सारी चीजों को शामिल करे?
2: ये तो बहुत आजकल हमारे प्रकृति में इतनी सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं कि हमें मौसमी सब्जियां, फल, ये सब चीजें हमें जरूर लेना चाहिए
1: जी।
2: साथ ही प्रकृति में पाए जाने वाले फल, सब्जियां, दाल, अनाज, दूध, दही, पनीर आदि से प्राप्त होता ही है ये सब हमें मौसम के अनुसार प्राप्त होते हैं। जैसे कई लोग बादाम नहीं ले पाते तो उसके लिए उसके बदले मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली की चिक्की खा सकते हैं
1: जी।
2: ऐसे और भी कई चीजें हैं जो अपना घर में उन सब चीजों
1: के
2: भुने चने होते हैं वो भी आपको ले सकते हैं, वो प्रोटीन आपको उसमें अच्छा मिलेगा
1: जी।
2: तो इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप उसमें से प्रोटीन भी प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
2: इस तरह से आप संतुलित भोजन आप अपना ले सकते हैं।
1: जैसे कि आपने कहा वेट नहीं बढ़ेगा, तो आजकल का जो परिवेश है उसमें सभी चाहते हैं कि हम दुबले पतले दिखें,
2: बिल्कुल
1: हम ज्यादा मोटे ना हो जाएं। तो क्या खाने के साथ साथ जीवन में काम के साथ साथ व्यायाम और संतुलित भोजन दोनों का तालमेल कितना जरूरी है?
2: अगर आप खाने को सही तरीके से और सही समय पर खाएं तो आपको भोजन के सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे। और खाना कभी भी भरपेट ना खाएं, थोड़ा बहुत जगह पेट में जरूर रहना चाहिए। ज्यादा तला हुआ भोजन ना खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, ज्यादा मिर्च मसाले ना खाएं। इस व्यस्त जिंदगी में जंक फूड का चलन ज्यादा है जिससे पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं और बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसलिए भोजन वैसा करना चाहिए जिससे हमें सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त हो। जैसे कि कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता राजा के जैसे करें, दोपहर का खाना युवराज के जैसे करें और रात का खाना संतों के जैसे करना चाहिए
1: जी।
2: इस तरह से हल्का भोजन करने से आपको रात को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरह से ज्यादा अंकुरित दालें, चने, मूंगफली, ये सब सलाद के साथ जरूर खाएं। जूस की जगह अगर आप फल खाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, जिससे आपको इससे फाइबर भी आपको मिलेंगे जो कि आपके डाइजेशन में फायदा करता है और साथ ही साथ दिन में 30 मिनट अपने लिए जरूर टाइम दे व्यायाम के लिए।
1: तो श्रुति जी, अब हम अंत में आपसे एक प्रश्न ये करना चाहेंगे कि क्या मौसम के हिसाब से संतुलित भोजन में बदलाव लाना जरूरी है, तो हमें अपने खान पान में किन किन सावधानियों को रखना चाहिए? हाँ,
2: एक महिला अपने परिवार को देखते हुए मेन्यू प्लान करती है
1: जी,
2: कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और हस्बैंड के लिए क्या अच्छा है। बच्चे ग्रोइंग एज वाले हैं तो उनके भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में प्रभाव ना पड़े। और बच्चे खेलते कूदते हैं तो उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है
1: जी।
2: इसके लिए फ्रूट जूस पिए, लस्सी पिए, दूध पिए, मिल्क शेक लें, जैसे चीकू, केला, स्ट्रॉबेरी, ये सब बच्चों की पसंद के होते हैं
1: जी।
2: तो इन सब चीज से आप शेक बना के बच्चों को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, ये पौष्टिक भी होते हैं। खाने में हरी साग सब्जियां जरूर खाएं, और बड़ों के लिए तली चीजें ना बनाएं, मीठा भी कम से कम खाएं, फल, हरी सब्जियां, सलाद ज्यादा खाएं। तो मौसमी सब्जियां, फल अपने खाने में शामिल करें, जैसे ठंड के मौसम में भूख ज्यादा लगती है
1: जी,
2: खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हमारे खाने में शामिल करें। और जब हम मौसम के अनुसार मौसम के फल और सब्जियों का फायदा उठाएंगे तो ही हमें सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त।
0: सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, विषय था महिलाओं के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार। जानकारी रही थी श्रुति सचदेवा, आपसे बातचीत कर रही थी अल्पना कपूर। सखियों, हम आशा करते हैं कि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक होगी, आप इससे अपने जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगी। सखियों, अब सुनते हैं एक और गीत, फिल्म का नाम है प्यासा सावन। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने।

सखियों, जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल है तो कल है और जीवन है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और जल का अधिक उपयोग आज जल की संकट की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सखियों, कभी हम बहुत अधिक वर्षा का आनंद लेते थे, लेकिन अभी हम महसूस भी कर रहे हैं कि इस वर्ष बारिश पहले की तुलना में कम हुई है और आगे भी संभावना कम ही नज़र आ रही है। सखियों, अब भी अगर हम नहीं जागे तो भविष्य में जल संकट और भी बढ़ सकता है। सखियों, जल को बचाने के लिए हमें स्वयं कुछ प्रयास करना ज़रूरी है। नल को बिना कारण कभी भी खुला ना छोड़ें। ब्रश करते समय या दूसरे अन्य काम करते समय जब जल की आवश्यकता हो तभी नल को खोलें। साथ ही वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए घर के बाहर एक गहरा गड्ढा खोदें, उसमें ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे बारिश का पानी उसमें जा सके। सखियों, सोख पे

एक सरल और प्रभावी उपाय है। इससे घरों से निकलने वाले रसोई, स्नान घर और अन्य उपयोगी पानी को जमीन में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है। इससे पानी

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में आप सुनेंगे कलाकार रेवाराम विश्वकर्मा और साथियों के स्वर में ये लोक भजन।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं कलाकार रेवाराम विश्वकर्मा और साथियों के स्वर में लोकगीत। इनके स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे जो है राई खरवा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर आनंद आप ले रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रेवाराम विश्वकर्मा और साथी। इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये ताहू का गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं मानस रॉय चौधरी। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं कलाकार मानस रॉय चौधरी के स्वर में भजन। अगला भजन इन्हीं के स्वर में सुनेंगे, जिसे लिखा है मीरा ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म तमाशा से गीत सुनेंगे मीका सिंह और नकाश अजीज के स्वर में। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार ए आर रहमान।

मैं हूं ना। इस फिल्म से अगला गीत सुनेंगे केके और अलका याग्निक के स्वर में। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने और एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को सावन माह के शुभारंभ की आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और अमरकंटक सहित प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन, पार्किंग, यातायात, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है।
2: कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं, ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है।
1: वहीं आगरमालवा के ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 50.26% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। इसी बीच लखनपुर गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर कुछ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं उदगवा में फर्जी मतदान का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया

से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भोपाल में आज से इलेक्ट्रिक बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 ई बसें चलाई जाएंगी। इनमें चिरायु अस्पताल से बोर्ड ऑफिस मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री तक के मार्ग शामिल हैं। यात्रियों से न्यूनतम 7 रुपये तथा प्रति किलोमीटर 1.5 रुपये की दर से किराया लिया जाएगा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अनुसार फिलहाल 30 ई बसें शहर में पहुंच चुकी हैं और अगले चरण में अन्य रूटों पर भी इसका संचालन शुरू किया जाएगा। औपचारिक लोकार्पण 15 अगस्त को प्रस्तावित है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून के 3 मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश और उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रायसेन, सागर, बैतूल तथा छिंदवाड़ा, फांडूना और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के मानस भवन में 1 से 5 अगस्त तक मंदाकिनी श्री राम किंकर के पंच दिवसीय प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। आगरमालवा के ग्राम आवर, पालखेड़ी और चाचाखेड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों से संवाद किया गया। मंडला में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के समापन पर बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परिणाम देने वाले 61 शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को मंत्री संपतिया उइके ने सम्मानित किया। और शिवपुरी जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कृषकों से खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
2: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
3: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
4: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, ये ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
5: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
7: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भिखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
8: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
9: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
10: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावण मेला शुरू हो गया है।
12: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों

0: बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमरीका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। लता मंगेशकर के स्वर में पहला गीत सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी। फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, असमा, सालिया शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। इन्हीं के साथ गांधीबाग अकुला से हैं रमेश और वैशाली कटनकर। अगले श्रोता कोटवा नारायणपुर से हैं। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना। भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपने अपने मकान, फ्लैट या अन्य परिसर को किराए पर दिया है अथवा किसी किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी या अन्य सहायक को रखा है तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, छात्रावास, निर्माण स्थलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर तथा घर घर जाकर वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित संस्थानों द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक।

है। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुरक्षा में अपना सहयोग दें तथा निर्धारित प्रावधानों का पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में अगला गीत सुनेंगे फिल्म प्रेम रोग से। सुरेश वाडकर लता मंगेशकर के स्वर हैं, गीतकार नरेंद्र शर्मा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश हमें आई है खंडवा ग्राम लोहारी से। श्रोता हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। इन्हीं के साथ खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

उदित नारायण और विभा शर्मा के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म इश्क से। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, गीत को संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। इस गीत के लिए फरमाइश महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, एकांश गवाणकर। इन्हीं के साथ बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर। नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: मुझे शर्म आती।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म राब्ता से। गीतकार इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए कहा कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 50.26% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास के शुभारंभ की आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहा है। भोपाल में आज से इलेक्ट्रिक बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 ई बसें चिरायु अस्पताल से बोर्ड ऑफिस, मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री तक के सभी मार्ग पर चलेंगी। प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन कल रात समाप्त हो गया। राज्य कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि अब प्रत्येक पात्र किसान से 60% तक मूंग की खरीदी की जाएगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम विवरण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शाम के 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:30 और रात 9:30 पर। शाम के ठीक 6:00 प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें लक्ष्मी जुड़ा की भेंटवार्ता होगी, विषय रहेगा दुग्ध प्रसंस्करण के लाभ। रात 8:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़। DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5:00 सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमारा प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रेवाराम विश्वकर्मा और साथी। इनके स्वर में आप सुनेंगे लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं मानस रॉय चौधरी। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। मृत्युदंड से गीत सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

तेरे नाम। इस फिल्म से गीत सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। गीतकार समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

दुल्हन हम ले जाएंगे। इस फिल्म से गीत सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू, सुनीता राव और साथियों के स्वर में, गीतकार सुधाकर शर्मा, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म से गीत सुनेंगे लता मंगेशकर और कुमार सानू के स्वर में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और हर संभव सहायता और सहयोग देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं की उन 9 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने समुद्र प्रदक्षिणा नाम के तीनों सेनाओं की महिलाओं के दुनिया का चक्कर लगाने वाले नौका अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष 100 मीटर T47 प्रतियोगिता में पैरा एथलीट दिलीप महाडुगवित को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने रजत पदक विजेता मोहम्मद बासिल मोसिंगारनाथ को भी बधाई दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। निर्वाचन क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास के शुभारंभ की आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भोपाल में आज से इलेक्ट्रिक बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 ई बसें चिरायु अस्पताल से बोर्ड ऑफिस मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री तक के मार्ग पर चलेंगी। और मौसम विभाग ने आज उज्जैन और सागर संभाग सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच से अधिक बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएच पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक दरिंदा। इसके लेखक हैं हाशिम असदिक, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है हाशिम।

2026 पर चर्चा जारी। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया। लोकसभा की भी कार्यवाही जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ISAV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से आज नई दिल्ली में बातचीत कर उनकी असाधारण उपलब्धि और दृढ़ संकल्प की सराहना की। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर 14%, मध्य प्रदेश की द्वितीय सीट पर 32% और बिहार के बांकीपुर सीट पर लगभग 12% मतदान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने कल रात ईरान में हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए हम पेश करने वाले हैं हमारा विशेष

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहाँ ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहाँ भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से, कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों, कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता
0: जी।
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज़्यादा काम कराओगे वो उतना ज़्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहाँ पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज़ के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज़्यादा वो कर रहे हैं
0: जी। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर। और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं

0: वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं, तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नज़रों से देखोगे तो उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पर जाते हैं, वार्ड्स पर जाते हैं, ऑपरेशन पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शी इज़ द वन, वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज़ निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही। मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और ख़ास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर हैं, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुँच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है। जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुँचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये, आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर उस राज्य बहुत ज़्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
1: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
0: अच्छा।
1: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहाँ था, अरे तू वहाँ था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहाँ थे, तुम कहाँ थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो

0: सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल्स की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल ख़त्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे ख़राब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज़ नॉट डन एज फार एज जहाँ तक मेरे लिए बात है। भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूँ, बिल्कुल सीधा हूँ, जहाँ खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊँ, जहाँ आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, शोर नहीं करूँ। अब वेल मैं इसमें काफ़ी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज़्यादा बदमाश कोई नहीं था।
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज़्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था।
1: अच्छा।
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
1: वाह क्या बात है, क्या
0: बात है। मतलब आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई।
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: ऐसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसे कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब ज़रूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुँचे, ये कहानी ज़रूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हट के खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था, वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे।

0: वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूँ, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्ज़ाम असली, ये तो सब बेकार है। 7 के 7 एसएसबी एग्ज़ाम देने नहीं गए।
1: अच्छा।
0: सो 8 के 8 ने आईआईटी का एग्ज़ाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियाँ तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर ज़रूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुँचे?
0: वो हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। एक और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था। तो हम 4 थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा। और देखा कि फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है, जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्ज़ाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई। और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो वहाँ से कॉल अप लेटर आ गया एसएसबी का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ गए। वहाँ पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज़ काफ़ी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा। अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ जीटीओज वाला जो काम था वो भी आ गया। तो वहाँ फिर लाइनअप लगी, तो वहाँ पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा।
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माय लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज़ पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कर्नल साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूँ, आपके बचपन, जैसे आपने हमने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीज़ों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियाँ भरपूर करते थे, शैतानियों से

ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए दो बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोच

0: कर निक्कर पहनकर अच्छा। बारिश में भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
1: वाह।
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा ज़रूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ।
1: अच्छा।
0: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के ज़िंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: क्या बात है। वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया। और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया, और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी ज़िंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूँगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे, और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आँख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तू करेगा। सो दैट इज़ द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा ऑफिसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें ये नज़र नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज़ अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूँ, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज़ होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया, सीडीएस

0: क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहाँ आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉरपोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया, 2800 रुपये मेरे को पहली तनख्वाह वहाँ मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो ज़ीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपये महीना वहाँ पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे। अच्छा। आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माय फादर वाज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप ज़ीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपये थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूँ ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को ही।
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
0: अच्छा।
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो उस समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूँ तब से लेकर अब तक कभी कोई रॉइट नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहाँ थे, जहाँ पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहाँ तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो वाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नज़र नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
0: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लवर हैं, किस तरह से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उसी तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा?
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी, कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूँ। मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित तो मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
0: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ।
0: क्या बात,
1: मैं आपका शो

0: को कंडक्ट कर रहा हूँ मुझे, और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ या मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
0: देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए JNK रहेगा, श्रीनगर
1: जी,
0: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं JNK के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हमारी श्रीनगर में शादी हो गई।
1: वाह, क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे। उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमज़ोरी ये ज़रूर होती है कि सुंदर चीज़ को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
1: क्या बात है,
0: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई, और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
0: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, हमारे लोग लड़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा। दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी, बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकलकर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा,
0: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान, कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ, 15,000-18,000 फीट पर जहाँ ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहाँ भाग रहे थे, आप वहाँ दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई, एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528वां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का है।

0: दार मानना चाहिए।
1: शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये ज़रूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूँगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकल कर, अपनी माँ की आंचल से निकल कर सीधा पहुँचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आँखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज़ इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूँ देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
0: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
1: अभी तक
0: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
1: वाह।
0: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव। मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
1: वाह, आपने आज निःशब्द कर दिया। आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
0: मैं एक ही बात कहूँगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं। बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है। मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
1: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूँ। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
0: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजंस लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं, अटलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूँ और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीज़ें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूँ और मैं कह देता हूँ फायर।
1: क्या?
0: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूँ कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्चून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
1: क्या बात है।
0: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहाँ कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाज़ियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
0: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

नमस्कार, सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा कल ही ये विधेयक पारित कर चुकी है। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित किया जा चुका है। इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की गोलीबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी में हर समय रौनक रहती है। और भाई हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल आप
2: दो प्रश्नों से आज का पहला प्रश्न

0: है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
1: और हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है? इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म ऊंचाई से और जिसे आवाज दी है जावेद अली, दीपाली साठे और मधुबंती बागची ने।

0: दोस्तों, दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधेरे को यह भी बताता है कि उसका अंत निश्चित है। ठीक उसी प्रकार कुछ लेखक केवल कहानियां नहीं लिखते, बल्कि समाज को उसकी सच्चाई से परिचित कराते हैं। साहित्य के एक ऐसे ही अमर दीपक थे मुंशी प्रेमचंद।
1: दोस्तों, 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। इन्हीं परिस्थितियों ने उनके लेखन को गहरा और संवेदनशील बना दिया।
0: जी हाँ दोस्तों, यदि समाज एक दर्पण है तो प्रेमचंद की कहानियां उस दर्पण पर जमी धूल को साफ करने का काम करती हैं। वह समाज की अच्छाइयों की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसकी कमियों पर भी उतनी ही निर्भीकता से प्रश्न भी उठाते थे।
1: और दोस्तों, उनकी कहानियों के किरदार काल्पनिक नहीं थे, बल्कि वह हमारे आसपास के लोग थे, जैसे किसान, मजदूर, शिक्षक, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग और वे तमाम लोग जिनकी आवाज़

0: अक्सर समाज में दब जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आद्या। दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का छोटा हामिद आज भी हमें त्याग और संवेदनशीलता का अर्थ सिखाता है। वहीं पूस की रात का हल्कू हमें किसानों के संघर्ष से परिचित कराता है और उनका महान उपन्यास गोदान केवल एक किसान की कथा नहीं बल्कि उस समय के भारत का जीवांत दस्तावेज है।
0: दोस्तों, भले ही आज के डिजिटल युग के तौर तरीके बदल गए हों, परंतु मानवीय संवेदनाएं कभी भी पुरानी नहीं होती। प्रेमचंद हमें सिखाते हैं कि किसी भी समाज की असली प्रगति केवल ऊंची इमारतें या नई तकनीक से नहीं होती, वह तब होती है जब हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और अवसर मिले।
1: बिल्कुल सही कहा आद्या। तो आइए दोस्तों, हम और आप संकल्प करें, आधुनिकता की इस तेज रफ्तार में भी पढ़ने की आदत, संवेदनशील सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म नीरजा से कविता सेठ की आवाज में इस गीत को।

0: अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल आज की नहीं बल्कि आने वाली कल की भी सबसे बड़ी आवश्यकता है, हरित ऊर्जा।
1: बिल्कुल आद्या। दोस्तों, आज दुनिया तेजी से विकास कर रही है, नई नई तकनीकें हमारे जीवन को आसान बना रही हैं, लेकिन दूसरी ओर बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन हमारे सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ा हो गया है।
0: और ऐसे समय पर ग्रीन एनर्जी उम्मीद की एक नई किरण है। हरित ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और बायो एनर्जी जैसे ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति के अनुकूल हैं और बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और इन ऊर्जा स्रोतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
0: और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। भारत भी इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
1: सही कहा आद्या। दोस्तों, देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार लगातार हो रहा है, पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे प्रयास भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को एक नई दिशा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त हैं?
0: बिल्कुल नहीं रश्मि, बदलाव की शुरुआत हम से होती है। यदि हम अनावश्यक बिजली की खपत कम करें, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और जहां संभव हो सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं, तो हम भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। जब करोड़ों लोग एक साथ छोटी छोटी पहल करते हैं, तभी बदलाव संभव होता है।
0: तो आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि ऊर्जा की बचत करेंगे और हरित ऊर्जा को अपनाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
1: इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म सितारे जमी पर से सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्या कुमार की आवाज में इस गीत को।

0: दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर है ओलंपस मॉन्स। दोस्तों, ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना अधिक है।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है? जिसका सही उत्तर है गुजरात।
0: इसी के साथ दोस्तों, हम आज के कार्यक्रम की समापन की ओर पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ। तब तक दयालु बने,
1: जिज्ञासु बनिए
0: और दुनिया में अपनी उज्जवल रोशनी बिखेरते रहें।
1: नमस्कार।

आकाशवाणी जबलपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768।

इतना आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म हॉलीडे का ये गीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, सोनू निगम, कीर्ति सगाथिया, श्रेया घोषाल की आवाजों में। कौसार मुनीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने और ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म दावत-ए-इश्क से।

फिल्म एंटरटेनमेंट का गीत अभी आप सुन रहे थे, आतिफ असलम और शलम अली खोलगड़े की आवाज़ों में। प्रिया पंचाल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज़ में, कौसार मुनीर का लिखा यह गीत फिल्म हीरोपंती से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का गीत सुनिए। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ें हैं। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने। आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
0: भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, पुतला दहन, ज्ञापन, कार्यालय, निवास अथवा शासकीय भवनों के घेराव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। आदेश के अनुसार बिना अनुमति ऐसे आयोजनों का संचालन, भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियां, हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री का प्रदर्शन या उपयोग तथा सार्वजनिक अथवा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश 15 जुलाई 2026 से आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म भूषण विजेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को सम्मानित किया और उनसे बातचीत की। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 224.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ये राशि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकृत की गई है। ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह

0: क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में आयोजित वन अधिकारों से जुड़ी समीक्षा बैठक में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। मौसम विभाग ने आज उज्जैन और सागर संभाग सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच से अधिक बारिश होने का अनुमान है और भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
3: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
3: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये

0: प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
1: लब्ध प्रतिष्ठ।
0: इसका अर्थ है
1: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
0: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
0: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर

0: डॉक्टर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
8: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
10: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
10: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
10: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है,

0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा?
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
5: मेरा अच्छा, बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
3: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा,

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं सलीम शहजादा, रेहान खान, शंकर महादेवन और साजिद खान की आवाज़ों में ये गीत फिल्म हे बेबी से। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, इरशाद कामिल का लिखा यह गीत, प्रीतम का संगीत है, फिल्म का नाम है जब वी मेट और इस गीत को गाया है मीका सिंह ने।
1: Let me hear you.

मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। समीर का लिखा गीत और संगीत था अन्नू मलिक का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। विशाल शेखर का संगीत है और फिल्म का नाम है दोस्ताना। इस गीत को शब्द दिए हैं कुमार ने।

श्रोताओं, फिल्म दोस्ताना का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं लाभ जंजुआ, स्नेहा पंत और वाजिद की आवाज़ों में ये गीत फिल्म पार्टनर से। शब्बीर अहमद ने इस गीत को लिखा है और संगीत है साजिद वाजिद का।

0: हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
4: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
3: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
4: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
3: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
4: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
3: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
4: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
3: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
4: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
3: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
4: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
3: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
4: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
5: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
4: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
3: समय है पानी बचाने का,
4: पानी का मोल समझने और समझाने का।
3: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
6: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो बई गीत है, जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती। हाँ,
7: खूब ही सही चीज ना तुमने, जो बई लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
6: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
7: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
6: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
7: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
6: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
7: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
6: 9425702768।
7: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
6: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
8: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज आप सुनेंगे दुग्ध प्रसंस्करण से लाभ विषय पर लक्ष्मी जुड़ा की भेंट वार्ता। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8:15 पर होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 और 9:30 पर। और रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे 8:30 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा का समय होगा 9:15 और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 9:30 पर। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार, जिसमें कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन, राग होगा नट भैरव। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण 12:00 और 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काये कांतारे का 16वां भाग आप सुनेंगे 12:30 पर। 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 2:00, 5:33, 6:30, 8:30 और 9:45 पर। 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण 7:21 पर होगा। रात 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8:15 पर किया जाएगा। कार्यक्रम खेल जगत का प्रसारण 9:30 पर होगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की वर्तमान स्थिति पर मोहम्मद शाहिद की वार्ता। और रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, ये थे कल यानी 31 जुलाई 2026 शुक्रवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाश

0: छवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केला उत्पादक किसानों को 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। और दतिया विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान, शाम 6 बजे तक हुआ 71.44% मतदान। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित किया जा चुका है। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर दंड इसमें शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना मेक इन इंडिया और दुनिया के लिए भारत में निर्माण के संकल्प को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, भरोसा और नवाचार के दम पर भारत वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह के क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 175 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 109 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों, किसानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में बन रहे रेप्टाइल पार्क और अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होमगार्ड के जवानों को सांपों को सुरक्षित पकड़ने और उनका रेस्क्यू करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रिहायशी इलाकों में सांप निकलने पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सर्प उद्यान शोध, संरक्षण और जनजागरूकता का प्रमुख केंद्र बनेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
5: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आज बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव से वर्चुअल रूप से जुड़कर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8,000 से अधिक केला उत्पादक किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बुरहानपुर के केले और केले के रेशे से बने उत्पाद अब देश के साथ साथ विदेशों में भी नई पहचान बना रहे हैं।
6: एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला और अब केले के जैसे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग और न केवल कपड़ा बल्कि सजावट

0: काफी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वो देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। धार में पीएम मित्रा पार्क का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 71.44% मतदान दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। इस सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान के दौरान कुछ शिकायतें भी सामने आईं जिन पर चुनाव अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। वे आज भोपाल में वन अधिकारों से जुड़ी समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों की ग्राम सभाओं में सभी काम पारदर्शिता और आपसी सहयोग से किए जाएं। बैठक में बताया गया कि 15 अगस्त को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में लोगों को वन अधिकारों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना के इस पवित्र महीने में प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। श्रावण मास के पहले दिन उज्जैन, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महेश्वर, भोजपुर, बड़वानी, कुबेरेश्वर और प्रदेश के अन्य शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। रतलाम में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अधिकारियों की बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संयुक्त टीमों से नियमित जांच, सड़क पर गश्त बढ़ाने और स्कूल कॉलेज तथा छात्रावासों के आसपास विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया गया। वहीं शाजापुर महिला थाने में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के समापन पर महिलाओं को नशे के दुष्प्रभाव और मानव तस्करी से बचाव की जानकारी दी गई। इस बीच बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया संदेश में लोगों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ सुरक्षित जीवन अपनाने की अपील की।
2: मध्य प्रदेश पुलिस का अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभी चलाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं और युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि नशे से जितना दूरी हो बना के रखो। नशे की आदत आपके जीवन को, आपके रिश्तों को, आपके परिवार को सब कुछ नष्ट करके रख देती है। और जो जीवन कहीं और जा सकता था, सुंदर हो सकता था, खुशहाल हो सकता था, समाज के परिवार के काम आ सकता था, वो तबाह हो जाता। दोस्तों, नशे से दूरी है जरूरी, ख्याल रखना, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। थैंक यू।
1: भोपाल में आज से एसी इलेक्ट्रिक बसों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 10 ई बसें शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर चलाई जा रही हैं। इन बसों का किराया 7 से 40 रुपये रखा गया है, जो सामान्य सिटी बसों के बराबर है। नई बसों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन भी लगाए गए हैं। नगर निगम के अनुसार अभी 30 ई बसें शहर में पहुंच चुकी हैं और 15 अगस्त को औपचारिक लोकार्पण के बाद इनका संचालन और बढ़ाया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी के करंजिया स्थित कबीर चबूतरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज करमंडल, सिवनी और चकरार नदियों के उद्गम स्थलों पर पूजन कर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया। नीमच जिले के ग्राम जाट में आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। शहडोल के ग्रामीण इलाकों में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आज बोरखेड़ी, सलोकी और लालूखेड़ी के मध्य प्रस्तावित होल्डिंग एरिया की भूमि का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजगढ़ जिले के कचनारिया सुल्तानी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी कल तक तय की गई है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के भोपाल में आयोजित होने वाले 6 माह के निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के लिए छिंदवाड़ा के पिछड़ा वर्ग के 100 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 20 पात्र छात्रों को आवेदन करने के लिए 10 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए आज MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केला उत्पादक किसानों को 107.72 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की और दतिया विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शाम 6 बजे

0: ये आकाशवाणी
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अब अपना कार्यक्रम चौपाल। तो हम सब चलते हैं चौपाल पर।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे सभी भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और भैया हरो कैसे का हाल चाल है आप औरन के? अब आप सोच रहे हुई कि का हाल चाल बताएं, इतने कुमस हो रही है कि चैन ही ना पर रही और ऊपर से जे बदरा आवत हैं और बिना बरसे चले जाओते हैं। कभी उनकी कृपा हो जाए तो वे बरस जात, नहीं तो खुद ही भीज रहे अपने पसीना से। तो भैया हरो जा मौसम की तो का ही कहें, है ना, जब मौसम में शरीर से इतो पानी पसीना के रूप में निकल जाते हैं। तो भैया हरो शरीर से मैं पानी की कमी ना होए जी के लाने भैया, हम तो यही कहें कि आप और खूब ही पानी पियत रहो। और दूसरे जा बात को भी ध्यान रखो भैया कि देखो जौन पानी हम और पी रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं। तो भैया पानी साफ शुद्ध होना चाहिए, काहे से कहा है कि देखो बरसात में जो पानी भी दूषित सो हो जाते हैं, मटीलो पानी आने लगते। तो भैया हरो पानी उबाल के छान के पीने हैं, है ना। और भैया देखो कहीं भी तो जाते हैं ना कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो भैया हरो गुरु की बात चली है तो हम आपको बता दें कि कल हती गुरु पूर्णो, है ना। सो हमारे सभी भौजी भैया हरन ने अपने अपने गुरु की कृपा पावे के लाने उनकी पूजा अर्चना करी। हमारे कई भैया हरे तो उनके दर्शन के लाने उनके आश्रम गए, तो हम गए हते अपने गुरु को आशीर्वाद लेवे। तो जब हम उतने से आ रहे हते तो उनने हमें प्रसाद दो। सो हमने सोची काहे ना पूरा पड़ोस में सबको जब प्रसाद बांट दो जाए। तो हमें जब हम कुलिया से निकल रहे थे तो हमें मिल गई सोहना काकी। सुबह हमने जब उन्हें प्रसाद दो तो वे हमसे पूछने लगी कि क्या है कितने गई हती। सो हमने उन्हें बताया कि हम अपने गुरु को आशीर्वाद लेबे के लाने आश्रम गए हते। हमने पूछी काय काकी कक्का कितने चले गए। सो उनने बताई कि वे तो चौपाल तने गए हैं। तो हम उनसे मिलवे के लाने चौपाल पे पहुंच गए तो देखें कि कबे नीम तरह बैठे और उनके बगल में हरनाम दद्दा हाथ में अखबार लाए बैठे थे। और वे बड़े से परेशान और चिंतित से हमें देखे। सो हमने उन्हें प्रसाद दो उनके हाल चाल लाए तो वे कहने लगे कि भैया देखो हाल चाल तो देखो बेटा बहुत बढ़िया है, लेकिन का है कि आजकल के समय की भाई का कहें, दुनिया में कैसो काका होन लगो है। अब तो आदमी लड़का बिच मोड़ा मोड़ी सो बेचे जान लगे हैं और जे कछु ऐसे अपराधी गलत काम करवे वाले दलाल जो काम कर रहे है ना, जो हमारे भोले वाले भैया हरन को लड़का बच्चन को बहन बिटियन को बहलात फुसलाते हैं, उन्हें शहर में अच्छी नौकरी को लालच देते और फिर उन्हें उतर जाके बेच देते या जबरदस्ती ईंट भट्टा के काम में या कौनो फैक्ट्री या बंधुआ मजदूर सो बना देते हैं और कहूँ कहूँ तो गलत कामन में ढकेल देते हैं। सो हमने जा अखबार में आज पढ़ी कि आज 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाओ जा रहा हो। और हमने जब पूरी खबर पढ़ी तो हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो भाई कक्का कहने लगे कि जे तो देखो कितो गलत काम है, हैं आदमियों को बेच देते हैं बंधुआ मजदूर बना देते हैं उन्हें गलत काम में लगा देते और जही तो मानव तस्करी होते हैं। अब पिछले साल की भी कक्का बताने लगे कि पिछले साल की बात है कि अपने जोन रामेश्वर भज्जा हते उनके दोनों लड़का शहर में नौकरी के लाने चले गए। अब को उठो जो ठेकेदार

तो वो उन्हें लेवा के ले गओ। अब कछु महीना तो उनने नौकरी करी, पैसा भेजे, फिर तो भैया बाद में पैसा आवे बंद हो गए, और बाद में तो फिर उनकी कोनो खबर भी नहीं है कि वे हैं कि नहीं है, कछु पतो नहीं उनको। अब तो भी भैया रामेश्वर जो भज्जा आते भी बहुत ही परेशान हो गए। सो उनने पुलिस में जब रपट लिखाई तो बड़ी मुश्किल से भी अपने मौड़ान को छुड़ा पाए। तो भैया रो ऐसे लोगन से अपन खां अपने बच्चन खां बचा के रखने हैं, है ना। ऐसे दलालन के झांसे में नहीं आने, काहे से जे ऐसे ही लोगन को निशाना बना होते हैं जो गरीब है, जिन्हें रोजगार की तलाश है। तो भैया हरो, इनसे हमें अपने आप को बचावने हैं, अपने मोड़ा मोड़िन को बचावने हैं। जी के लाने भैया, जरूरी है कि हम सजग रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। काहे से भैया, देखो जी, जागरूकता ये जानकारी ही अपनों सबसे बड़ो हथियार है। तो सबसे पहले तो भैया कछु बातन पे अपन का जरूरी ध्यान देने। एक तो कौनो अनजान आदमी की बात में अपन का नहीं आने। अपन को कितो ही लालच दे कि फला शहर में इतने 1,000 की नौकरी मिल रही है, इतो पैसा मिले, तो भैया हम तो आपसे कह दें कि ऐसी बातन में तो तनको नहीं आने हैं, है ना। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत के दम पे नौकरी पाएं। और अगर कौनो ठेकेदार भज्जा देखो तुम्हें बाहर नौकरी के लाने ले जा रहा है, तो भैया हम तो यही कहें कि अपने जो पंचायत है उतने उखो पूरा नाम पता मोबाइल नंबर, कौन सी कंपनी है, कितने हैं, मैं ना बाकी पूरी जानकारी अपने पंचायत में जरूर करा दें, उखो रजिस्ट्रेशन करा दें। इसे कहा हुई है कि प्रशासन के पास कम से कम बाको रिकॉर्ड तो रहे। तो भैया हरो, अपने घर में छोटे छोटे मोड़ा मोड़न पे भी अपन खा नज़र रख रहे हैं। उन्हें कौनो अनजान आदमी के संगे अकेले नहीं भेजने हैं। और यदि वे इतने में तक खेल भी रहे तो भैया अपनी नज़रन के सामने रहे, है ना। तो ऐसे कौनों पे यदि आपको कभू लगत है, कभू शक सो होते है, या कौनों बच्चन को महिलाओं का जबरदस्ती ले जा रहा है, तो भैया आपको क्या करना है कि तुरंत ही पुलिस को नंबर 112 पे फ़ोन करो। या फिर भैया देखो, आजकल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 1098 यानी कि 1098 नंबर है, या अपन जो कहें कि 1098 जहाँ नंबर पे तुरंत ही फ़ोन करके मदद मांग सकते हो। भैया अरे देखो, जब तक हम सजग ना हुई हैं तब तक ऐसे ही हमाओ जो है दोहन होत रहे। तो हम और उनको सजग रहने तभी हमाओ गांव, हम लोग, हमाओ परिवार सुरक्षित रहे। तो भैया अरे देखो, काम के लाने हमें अपनो गांव छोड़वे की तनको जरूरत नहीं है। काहे से देखो, शासन ने हम और उनके लाने कितनी योजनाएं चला रखी हैं, और उनमें से भैया देखो एक योजना मतलब जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम देखो घर बैठ के बैंक से लोन लेके, है ना, अपनो कोनो काम धंधा शुरू कर सकते हैं, है ना। अब देखो, आपको बताया कि कछु महीना पहले किशन लाल भैया हते भी अपने उनने कपड़ा की दुकान खोली। अब उनने जो लोन है बैंक से, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिया से बैंक से लोन ले लो, और अपनी उनने दुकान शुरू करी। दुकान तो भैया देखो भगवान की कृपा से उनकी दुकान अब अच्छी चलन लगी है, लेकिन काहे के शुरू में तो तनक भी परेशान हते। अब जब उनसे मिले तो भी कह करे हमने लोन ले लो है, कैसे पटा पाए, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। अब भैया जब शुरू में परेशान तो हमने कहूँ जब हम मिले तो हम भैया से जो ही कह रहे कि भैया तनक मन को कमज़ोर नहीं करने हैं, है ना, हिम्मत रखो, है ना। फिर देखो भैया उनने हिम्मत रखी और 2-3 महीना बाद धीरे धीरे ग्राहक बंधन लगे, अच्छो सामान अच्छो कपड़ा देते थे, सो उनकी दुकान पे खूब ही लोग आन जान लगे, उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। और अब तो भैया जो हाल है कि उन्हें अच्छो मुनाफा हो रहा है और अब वे अपनी और दुकान बढ़ावे की सोच रहे हैं। तो भैया रो, यदि आप खुद को छोटो मोटो कौनो धंधा करवो चाहो, तो भैया पुराने धंधों को यदि आगे बढ़ावो चाहो, तो आप जी के लाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से लोन ले सकते हो, वो भी बिना गारंटी के। और जी मैं शासन 3 हिसाब से लोन देत है, और वो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे जहाँ में जो पहलो लोन है तो वो शिशु लोन, जहाँ में आपको 50,000 तक को लोन मिल जाते। दूसरा लोन होता है किशोर लोन, जी मैं 50,000 से 5,00,000 तक को लोन मिल जाते। और भैया तीसरा लोन होता है तरुण लोन, जी मैं धंधा को और बढ़ाने हैं तो भैया 5 से 10,00,000 तक को लोन मिल सकते। और रही भैया ब्याज की बात, तो आपको बता दें कि इमें जो ब्याज है वो लोन की तुलना में बहुत कम ब्याज लगते है, और चुकावे के लाने आपको 5 साल तक को समय भी मिल जाते। अब रही कागज पत्र की बात, तो आप अपने कौनों सरकारी अर्ध सरकारी प्राइवेट बैंक में जाके अपनो आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनो मूल निवासी प्रमाण पत्र, जैसे कि अपनो देखो वोटर आईडी है या बिजली को बिल है, और जोन धंधा आप और करवो चाह रहे हो आपको पूरा ब्यौरा, यानी कि बिजनेस की प्लानिंग, है ना, कि कैसे आपको कैसे क्या करना है, तो ये सब जरूरत की ये सब चीज़ें आपके पास होन चाहिए।
तो भैया आप जिसे आप बैंक में जाके और लोन ले सके तो, और या तो फिर भैया देखो आजकल ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जाने लगे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर के वो भी भर सके तो और जाए योजना को लाभ उठा सके तो। काहे से भैया रे देखो जाए योजना जो है आप और उनको आत्मनिर्भर बनावे में बहुत ही मददगार हुई है।

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो भैया देखो, सावन को महीना चल रहा है, आज से शुरू भाव है और वर्षा ऋतु तो चल ही रही है। तो हमने सोची काहे ना एक अच्छो वर्षा गीत आप और उनको सुनवा दो जाए। तो चलो कजरी सुनाते हमारे रतनलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया यार, आपको पता है कि देखो बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारी होती है और उनमें से भैया कई बीमारी तो ऐसी हैं जो दूषित पानी की वजह से होती है। तो दूषित पानी की वजह से भैया देखो टाइफाइड जो बीमारी है आपने सुनी हुई है, ये दूषित पानी के कारण ही होते। तो तभी देखो शुरू में जैसे हमने आपसे कही थी कि बरसात के मौसम में जो है पानी को हमेशा उबाल के छान के पीने हैं, है ना। दूषित पानी कई तरह की बीमारी को जन्म देते, जैसे उनमें से एक टाइफाइड है। तो भैया टाइफाइड बीमारी का है जाके, मतलब का कारण है, कैसे होते हैं और रोकथाम कैसे हम जाके करें, जी के लाने देखो डॉक्टर के एस परिहार अपन का जानकारी दे रहे हैं और इनसे भेंट कर रही हैं निशा दीदी। तो चल रहे डॉक्टर साहब के पास और लेते हैं जानकारी।
3: किसान भाइयों, जैसा कि सभी जानते हैं और कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है, और ये बात देखिए हम सब जानते हैं और इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, जिससे कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समय के साथ निभा सकें। फिर भी देखिए पूरी एहतियात बरतते हुए भी थकावट रहना, बुखार का रहना, ऐसी कई बातें हैं जिन पर हम आमतौर पर समय रहते ध्यान नहीं दे पाते हैं। और होता ये है कि एक दिन ये एक रोग के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं टाइफाइड यानी मोतीझरा की। तो ये मोतीझरा क्या है, कैसे होता है, इसके होने के पीछे कारण क्या है, लक्षण क्या है और हम कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सभी पर जानने के लिए आज अपने कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर के एस परिहार जी को। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये टाइफाइड यानी मोतीझरा होता क्या है।
4: जी, मोतीझरा एक बुखार है जिसमें एक रोगाणु होता है, इस रोग विशेष रोगाणु की वजह से होता है और यह सामान्य तौर पर विशुद्ध पानी या गंदगी में पनपता है, जैसे दूषित पानी पीने से या शौच के बाद हाथ न धोने
3: जी,
4: है ना, रखा हुआ खुला हुआ खाना खाने से जिसमें मक्खियां बैठती हों, जिस घर में विशेष तौर पर मक्खियां हों, उससे ये जो रोगाणु है ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और ये उक्त रोग को जन्म देता है, जिसका नाम टाइफाइड या मोतीझरा कहते हैं
3: जी। तो

0: इसका मतलब यह है कि टाइफाइड के होने के पीछे यानी
1: साफ सफाई का अपनी स्वयं की है ना, और खास तौर से ये दो तीन जो चीजें हैं, एक तो ये शुद्ध पानी, पानी में रोगाणु बहुत होते हैं, तो इसलिए अपन क्या है कि पानी की शुद्धता पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं,
0: और जो भोजन ले वो ताजा,
1: भोजन है वो ताजा ले और उसको रखें ना, ढक के रखें
0: जी,
1: इस पर मक्खियों का वो नहीं होना चाहिए।
0: अगर हम इस तरह इन चीजों का ध्यान रखें तो निश्चित है कि मोती झरा जो यानी संक्रमण की वजह से होता है, विशुद्ध पानी की वजह से होता है, खुले भोजन की वजह से हो सकता है, इससे बच सकते हैं
1: जी।
0: तो ये तो ही बात डॉक्टर साहब मोतीझरा की, ये क्या है और कैसे हो सकता है
1: जी।
0: हमें मोतीझरा हुआ है ये हम कैसे जान सकते हैं, मतलब इसकी लक्षण क्या है?
1: जी हाँ, मोतीझरा में ये थोड़ा सा बुखार जो इस लंबा रहता है
0: जी,
1: इसे तीन चरण में हम इसको मान सकते हैं, पहले सप्ताह, दूसरे और तृतीय सप्ताह। पहले शुरुआती में ये बुखार हल्का रहता है, सिर में दर्द है, थकान, और बुखार धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है, भूख भी कम हो जाती है, और ये शुरू में 99 से लेकर 103-104 तक भी जा सकता है
0: जी,
1: बुखार जी। ये इसी बीच में ही रहता है, ये कभी बीच नॉर्मल नहीं आ पाता, तो ये बना ही रहता है, निरंतर बुखार बना रहता है। इसके फिर सप्ताह के अंत में जाके ये छोटे छोटे गुलाबी रंग के दाने ये शरीर पर हो जाते हैं, खासतौर से पेट पर, सीने पर और पीठ पर, इनको अपन हाथ से रगड़ें तो मिट जाते हैं और फिर दिखने लगते हैं। तो ये स्पॉट होते हैं गुलाबी रंग के छोटे छोटे, तो ये इसकी पहचान करते हैं इससे।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, तो हालांकि ये सभी को नहीं होते
0: जी,
1: कुछ परसेंटेज में होते हैं।
0: एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जब ये मोती झरा ज्यादा बढ़ जाए,
1: हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये हफ्ते के अंत में होते हैं, एक हफ्ते के अंत में
0: जी,
1: लेकिन सभी को नहीं होते
0: जी।
1: तो इसमें क्या है कि टाइफाइड भी दो तरह का होता है, टाइफाइड, पैरा टाइफाइड है ना, तो किस तरह का है वो, तो ये संभावना है, मतलब ये हो सकती है ये
0: जी।
1: तो शुरुआती में तो हल्का बुखार है ना, सिर दर्द, भूख कम लगना, फिर तेजी से बुखार बढ़ते रहना, लेकिन नॉर्मल ना आना ठीक है। फिर बाद में ये एक एडिशन, मतलब एक अलग से ये भी स्पॉट गुलाबी रंग के हो सकते हैं। फिर अगले सप्ताह में जब बुखार ज़्यादा बढ़ा रहता है और इलाज चालू नहीं हो पाता है
0: जी,
1: तो व्यक्ति को निमोनिया ही हो सकता है,
0: टाइफाइड की वजह से।
1: हाँ, टाइफाइड की वजह से निमोनिया हो सकता है, खांसी रह सकती है
0: जी।
1: फिर इसके बाद अगर इलाज न लग गया है तो ये फिर गंभीर रूप में चला जाता है, तृतीय सप्ताह में जाके फिर छाले पड़ जाते हैं, आंतों में थोड़े थोड़े छाले पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से रक्तस्राव होने लगता है
0: जी,
1: और होंठ भी सूख जाते हैं, जीभ भी सूख जाती है, कुछ खा पी पाता नहीं है
0: जी,
1: तो यानी वेट लॉस यानी वजन भी काफ़ी कम हो जाता है, तो उस रक्तस्राव से फिर जो है ये स्थिति गंभीर बन जाती है
0: जी। बिल्कुल, तो किसान भाइयों देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने कितने सारे लक्षण बताए हैं, हमें चाहिए कि इनमें से कोई भी लक्षण, मतलब इस तरह का कोई लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, या ऐसा कोई बुखार हमें है कि बुखार उतर नहीं रहा है या उतर के फिर आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच समय रहते करा लें। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने जांच की बात कही है, तो टाइफाइड के लिए कोई विशेष जांच भी होती है?
1: हाँ, पैथोलॉजी में इसकी जाँच भी होती है
0: जी,
1: रक्त की जाँच होती है, इसको विशेष तौर बिडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है
0: जी जी,
1: तो उसे ये पता लग जाता है कि इसको मोतीझरा है या नहीं।
0: तो डॉक्टर साहब होती कैसे है वो, मतलब खून वगैरह कुछ लिया जाता है?
1: हाँ, रक्त की, रक्त यानी खून का सैंपल लिया जाता है
0: जी,
1: और उसे जांच कर लेते हैं
0: जी। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपनी समय रहते जांच जरूर कराएं, और अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब कोई रोगी है, उसे मोतीझरा हो गया है, टाइफाइड है उसे, तो रोग के चलते जैसे उसे अपनी दवाइयां तो लेनी ही है
1: जी,
0: उसके साथ साथ उसे और ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि वो समय रहते ठीक हो जाए?
1: उसको एक तो पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पानी की भी कमी हो जाती है, उसके होंठ सूख जाते हैं, जीवन से जीभ भी सूखने लगती है, तो पानी थोड़ा थोड़ा वो पीते रहें, और बाकी तो जो दवाएं हैं वो मुख्य है ही है उसमें है ना। और इसमें दूसरी चीज और है कि इसमें तली हुई चीजें है ना, मिर्च मसाले की चीजें, ये उपयोग न करें
0: जी,
1: क्योंकि उसके छाले पड़े हुए होते हैं
0: जी,
1: पड़ने की संभावना रहती है, इसलिए इनका त्याग करें,
0: मतलब ये कि हल्का भोजन लें, सुपाच्य मतलब जो जल्दी पच जाए, और मसाले मसालेदार चीज़ों से और तली हुई चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जो विशेष रूप से हमारे मतलब रोगियों को ध्यान में रखनी चाहिए?
1: रोगियों के लिए तो यही है कि वो निरंतर दवा समय से लें, समय से जांच कराएं, चिकित्सक को दिखाएं, लेकिन बाकी जो रोगी ना हो
0: जी
1: उसके लिए बहुत जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल, बचाव बहुत जरूरी है,
1: जरूरी है। ये जो है उन जो चीजें बताई हैं, उन खुले में शौच, गांव में लोग खुले में शौच करते हैं
0: जी,
1: खुले में शौच जो है नहीं करना चाहिए। खुले में शौच करने से क्या है, वो मक्खियां बैठती हैं और फिर वही मक्खियां मुख्य रूप से जो है खुले हुए भोजन पर बैठती हैं, ये एक बड़ा मुख्य कारण है
0: जी।
1: और लोग शौच के बाद भी हाथ भी ठीक से नहीं धोते, ये उसमें अलग से जुड़ी चीज। तो लिहाजा कुल मिला के ये साफ सफाई का जो है अपना स्वयं का ध्यान रखना इस बात के लिए बहुत आवश्यक है। ये पहले बहुत उगा करता था, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में सेंस डेवलप हो गया है साफ सफाई का और अपने व्यक्तिगत उसका, तब से जो है ये रोग उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पानी भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। लोग इसके लिए भी बड़े कौस पहले से जागरूक हो गए हैं, तो अब वो चीज़ सामान्य तौर पर शहरों में ये बहुत कम मिलती है।
0: तो भाई हम भाई बात कर रहे हैं अपने किसान भाइयों की, खासतौर से ग्रामीण भाइयों के लिए, तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई मतलब अपनी तरफ से गलती ना करें, जैसे कि खुले में शौच ना जाएं और
1: नाखून बना के रखें, हाथ के जो नाखून हैं इनमें मैल भर जाता है, कितना ही साफ करें तब भी रह ही जाता है, तो इसलिए नाखून भी इसमें एक बहुत प्राथमिक चीज है, इस पर ध्यान देना।
0: एक तरह से डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखना है अपने घर में और घर के बाहर पूरी तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि जो टाइफाइड होता है
1: गाँव में, जैसे कुएं होते हैं वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है
0: जी।
1: तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पास में वो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है अपने पानी को, जो शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो पानी को उबाल कर पिए, उबालें और ठंडा करें, फिर उसको छान के पी सकते हैं। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते, फिर क्लोरीन की गोली आती है, क्लोरीन की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को एक गले में गोली डाल दें, सुबह जो है वो उस पानी को ले सकते हैं। ऐसे गांव में ब्लीचिंग पाउडर और जो खुले, अच्छा जैसे मरीज होता है
0: जी।
1: मरीज घर में होते हैं तो उनको शौच जो है ना अपन कराते हैं, पेशेंट मतलब मरीज जो है बिस्तर से उठ नहीं पाता, अब उसको भी शौच कराना है तो अपन खुले पॉट में ना कराएं, पॉट में कराएं उसको ढक दें, उसमें ढक्कन रहता है, ढक दें उसको
0: जी जी।
1: तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान,
0: जिससे कि वो संक्रमण नहीं फैलेगा आगे, ऐसा हम जान सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि टाइफाइड क्या है और किस वजह से ये हो सकता है और इसे हम कैसे जान सकते हैं, किस तरह की जांच होती है इसमें और कैसी क्या सावधानी रोग के चलते हमें रखनी है, तो अगर हम इन बातों पर ध्यान दें तो स्वच्छता रखते हुए अपने आप को मोती झरा से यानी टाइफाइड से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारी आज की बातचीत का विषय था टाइफाइड कारण लक्षण और रोकथाम, इस विषय पर आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया देखो, डॉक्टर के एस परिहार जी ने अपन का टाइफाइड कारण और रोकथाम जा विषय पर कितनी नौनी जानकारी दी। उनने हमें बताओ कि अगर हमें जा बीमारी से बचाव रखने तो हमें कौन कौन चीज़न पे ध्यान देना हुई है। तो सबसे पहले बात आते हैं कि पानी जो है वो दूषित पानी ना हो, काहे से सबसे बड़ा कारण टाइफाइड को दूषित पानी ही होते। तो भैया पानी की बात करें तो हम तो यही कहें कि देखो बरसात को मौसम है तो पानी पे हमें विशेष ध्यान देने हैं और साफ शुद्ध पानी पीने हैं। और भैया देखो, चर्चा अपनी आगे हुई है, अब अपन लेते हैं तनक विराम और सुनते कछु विज्ञापन।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार

0: करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भैया अरे देखो अपने इतने पानी की कितनी तंगी सी आ जाते है ना। अब बात करें तो गर्मी के मौसम में तो भैया पानी की बहुत ही कमी सी किल्लत सी हो जाते। और जब बात अपन सबको पता भी है ना, गर्मी के दिनन में कुआं बावड़ी हैंडपम्प सब सूख जाते, पानी नीचे उतर जाते है ना। अब भैया जब अपन कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो भैया जो बात कहवे की नहीं है मानवे की है। काहे से देखो, अगर अपन ने ई बरसात में पानी को बहवे से नहीं रोको, पानी को नहीं बचाओ, तो भैया बूंद बूंद पानी को हमें फिर तरसने पड़े। और ई खिलाने भैया एक कई बात हम तो आपसे कहें कि वो कहते ना कि खेत को पानी खेत में और घर को पानी जमीन में। तो भैया जब बात को अपन को ध्यान रखने हैं, भैया अब जैसे अपन ने बात करी कि खेत को पानी खेत में जो नारा है, तो भैया ई के लाने जरूरी है कि अपन चारों तरफ खेत के चारों तरफ मेड़ बंदी कर दें, है ना। कि अपने जो भैया आ रहे हैं वो चारों तरफ मजबूत मेड़ बंदी कर दें और खेत की गहरी जुताई करें, और जब पानी बरसे तो वो खेत के बाहर ना बह पाए बल्कि जमीन जो है वो धीरे धीरे अंदर अपने सोख ले। और ई के अलावा भैया खेत के नीचे मतलब अगर जहाँ ढलान होते उतने अपन एक खेत तालाब है ना वो बना लें, और जब बरसाती पानी जब पूरा ऊ में भर जाए है तो बाद में पलेवा करवे या सिंचाई करवे कि वो काम में वो पानी आ जाए है। और भैया देखो अगर अपन और एक घर में घर को पानी के नहीं, घर को पानी जमीन में वो अपन बचाव चाहें तो भैया ऊ खिलाने का करें, तो भैया देखो बहुत आसान चीज़ है कि देखो जौन लोगन के घर है जो है उनकी छतें पक्की हैं, ऊपर गिरवे वालों पानी सीधो नाली में बह जाते तो वो पानी बेकार चलो जाते। तो भैया अपन का करें कि छत में पाइप लगा के बा पानी को जमीन में एक सोखता गड्ढा बना के बा में उतार दें, तो वो पानी सीधो छन छन के जमीन के अंदर चलो जाए। इससे का हुई है कि जमीन को जल स्तर जो है वो ऊपर आ जाए, और अपना जो हैंडपंप है वो कभी भी पानी बा को नहीं उतरा है, ना ही वो बा में हवा है। तो भैया अपने जो गांव देहात में पुराने कुआं तालाब बावड़ी हैं ऊ खिलाने भी भैया अपन को साफ सफाई पे ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। ये कहलाने जरूरी नहीं कि भैया एक की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने जौन पुराने कुआं हैं बावड़ी है तालाब है ऊ की अपन और मिलके साफ सफाई करें, बामे जौन कीचड़ गाद भर गई है ऊखों निकार दें और ऊखों गहरों कर दें, और बामे जौन जो कहते हैं ना जलकुंभी होते तो वो जलकुंभी हटा दें। उसे कहा है कि पानी भरो रहे ज़्यादा और पानी साफ भी रहे। तो भैया यदि हम और मिल्स के जतन करें तो भैया देखो फिर से अपनों जो आसपास को जो इलाकों है अपने आसपास को जो जगह है वो फिर से हरी भरी रही है और कभी उतने सूखो नहीं पड़े। तो भैया हम तो यही कहे हैं कि पानी बचाओ और जीवन बचाओ। और भैया चला चला एक गीत हो जाए तो चलो हम सब मिल के सुनते हैं संतोष श्रीवास्तव और साथियों के स्वर में ये कजरी।
1: झुमक झुमक।

0: तो भैया देखो, अब जावे की बेरा हो गई, तो अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, लेकिन चलते चलते आपको कल के चौपाल में का हम आपके लाने लाए हैं तो उसके बारे में बता दें। कल देखो मुंशी प्रेमचंद जयंती है, तो उसपे चर्चा हुई है, संगे जैविक खेती, टिकाऊ खेती, जैव विषय पर चर्चा करें, और भेंट वार्ता में आपको सुनवाएं तिल की उन्नतिशील प्रजातियां, जैव विषय पर डॉक्टर श्री वी एस कंसाना जानकारी दें। तो अब हमें आज्ञा दो सभी को आरती की, राम राम, जय जवान।
1: पहली लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव

अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों के एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा।

लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपये बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है।
उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20,00,000 बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मनोज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बीच भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत हम कैसे बना सकते हैं। गौरतलब है कि देश के वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की और इसमें एक अच्छी खबर दी कि पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्षों के बाद भी भारत ने अपने आयात स्रोतों और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाकर अपने बाहरी व्यापार को लचीला बनाए रखा है और 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान हमने रिकॉर्ड निर्यात किया जो $863.1 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कैसे अपने निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को निरंतर बढ़ाए रख सकते हैं। इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जाने माने विशेषज्ञ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और CEO डॉक्टर अजय सहाय जी को। डॉक्टर सहाय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें जगह जगह मार्ग रुक रहे हैं, एक ओर, दूसरी ओर ऊर्जा का जो संकट है उससे निकलने के समाधान ढूंढे जा रहे हैं, जगह जगह रूट्स बंद हो जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए कैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं?
3: जैसा आपने बताया है कि जितनी चुनौतियां हैं उसके बाद भी अगर आप भारत के निर्यात को देखिए तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। $863 बिलियन का हमने पिछले वर्ष में निर्यात किया था और जबकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आ गए, मिडिल ईस्ट की बहुत सी इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है, उसके बाद भी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2026-27 का देखें तो हमारा अप्रैल से जून जो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वो 15% बढ़ा है और ये बहुत ही सकारात्मक दिखता है और ये शो करता है कि जो भारतीय जो निर्यात है उसकी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो निर्यात है उसमें काफी विविधीकरण आ गया है, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें चाहे हम देशों की बात करें, दोनों में काफी विविधीकरण आ गया है। गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक प्रोएक्टिव पॉलिसी का सपोर्ट दिया है उससे भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। और अगर हम पूरे एक्सपोर्ट्स को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारे जिनको हम कह सकते हैं जो हमारे सनराइज सेक्टर्स हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल है, इन सेक्टर्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद जो हमारे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो हमें काफी मदद भी कर रही है। दूसरी चीज, बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना बेस कर रही हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनका जो हमें फायदा मिल रहा, ना खाली ट्रेड में मिल रहा बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट में भी वो हमें उसका फायदा मिल रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जैसे एग्रो एंड फूड सेक्टर है, मैरीन सेक्टर है, अपैरल टेक्सटाइल है, फुटवियर सेक्टर है, कार्पेट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, इन सेक्टर्स में भी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जबकि इस सेक्टरों में जो प्रतिस्पर्धा है वो ज्यादा हो गई क्योंकि बहुत से कंट्री जो है जो लो कॉस्ट इकोनॉमी है वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन फिर भी हम इस प्रतिस्पर्धा में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो फोकस था वो पहले दिन कुछ सालों में हमेशा यूरोप और US के ऊपर रहा है। US अभी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मार्केट है, 18% अपने एक्सपोर्ट का US को एक भेजते हैं, लेकिन EU और की जगह हमारे आसियान कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, अफ्रीका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ये हमारे लिए मार्केट बहुत बड़े होके आए हुए हैं और इन मार्केट में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इसी चीज, जो बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसका भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आया है। जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, चाहे पीएलआई स्कीम की बात करें या और हम प्लग इन प्ले के लिए जो स्कीम्स इंडस्ट्रियल पार्क में आ रही, वो भी इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने में बहुत मददगार होंगी, कि क्योंकि जो कंपनीज है वो इंडिया को अपना बेस बना रही है और इंडियन कंपनीज भी अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने चर्चा की बाजारों का विविधीकरण हो रहा है, साथ ही निर्यात के जो नए ठिकाने हैं वो बन रहे हैं,

0: थोड़ा और स्पष्ट करें, और यदि संभव हो तो कुछ उदाहरण देकर बताएं कि कहां हमारा निर्यात पहुंच रहा है और कौन सी वस्तुओं का निर्यात वहां पहुंचने लगा है जो हमारे पारंपरिक EU और अमेरिका जो दो मुख्य ठिकाने रहे हैं उनके अतिरिक्त।
1: देखिए, जैसे हिंदी में कहा जाता है, चुनौती में अवसर होते
0: जी,
1: हैं।
0: आपदा में अवसर की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं,
1: बात करते हैं, और वो एकदम सही है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% की ड्यूटी लगाई तो हमारा जो मैरीन जो एक्सपोर्ट था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि इक्वाडोर जो हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 5% ड्यूटी थी, मेक्सिको जो दूसरा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 0% ड्यूटी थी, और हमारा जो मरीन एक्सपोर्ट है उसका करीब 35% एक्सपोर्ट जो था वो US के लिए था। जब ये आया तो हम लोगों ने बहुत चिंता जताई कि ये इंडिया का मरीन एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन हम सब लोग अचंभित रहे जब हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मरीन एक्सपोर्टर्स है उन्होंने बहुत जल्दी EU, चाइना और रशिया में अपने को बड़े अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया, और इसका ये रिजल्ट रहा कि अगर 25-26 के हम एक्सपोर्ट देखें जहां हमारा एक्सपोर्ट US के लिए प्रभावित हुआ था, हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो करीब करीब 15% मरीन एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ऐसे और भी क्षेत्र है जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और उस प्रतिस्पर्धा बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तीसरी बात है कि एक ग्रोइंग रियलाइजेशन इंडस्ट्री में आ रहा है कि एक्सपोर्ट आपको स्केल प्रोवाइड करने के लिए और आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपको डिस करने के लिए बहुत अधिक मदद करता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब रेड सी की क्राइसिस हुई तो ये हुआ कि जो भी हमारा सेरेमिक का जो भी उद्योग है वो बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन जब हम लोगों ने खोजा का अध्ययन किया तो हम लोगों ने फाइनल की जो भी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट की ओर चली गई थी, लेकिन जब रेड सी की प्रॉब्लम खत्म हुई वो फिर वापस एक्सपोर्ट में चले गए। तो शायद इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास इतना बढ़िया वाइब्रेंट डोमेस्टिक कंट्री को नहीं है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऐसी सुविधा नहीं है।
0: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जो वैश्विक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत को अपना बेस बना रही हैं और हमारे यहाँ से उत्पाद अन्य देशों को जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ भारत में इनका अच्छा आधार बन गया और निर्यात हमारा अब अच्छी तरह हो रहा है, उन्हें थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह ये लाभान्वित कर रहे हैं और उनके समक्ष क्या चुनौतियां वर्तमान स्थिति को देखते हुए आ रही है।
1: देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका स्मार्टफोन है। अब देखिए, अगर इंडिया के 2015-16 के डाटा देखिए तो हम करीब करीब जो हमारा 24 से 25 बिलियन डॉलर इंपोर्ट रहता था स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन का, आज की डेट पे हम नेट एक्सपोर्टर मोबाइल सेक्टर में आ गए हैं। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया को बेस बना दिया और इंडिया का जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया के ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कुछ बात कर रहा था मैं, जैसे बड़े बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, वो जिसका जो उनका एक्सपोर्ट का प्लान है तो उसके प्लान के लिए शायद जो साउथ के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चेन्नई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो जो कैपेसिटी है वो भी उनको ही नहीं डील कर पाएगी, और देयर आर नंबर ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर आल्सो। ऐसे अगर हम बात करें टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जो ग्लोबल कंपनीज है वो इंडिया से इंक्रीजिंगली प्रोक्योरमेंट कर रही है और एक तरह का जो सप्लाई चेन उनको चाहिए वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया है। एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि US ने इतनी जब टैरिफ भी इंडिया पे लगाई थी, 50% टैरिफ अपैरल सेक्टर में, एक्सपोर्ट नहीं प्रभावित हुआ, इसका बहुत बड़ा कारण था कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया में जो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन एस्टैब्लिश कर ली थी उसको वो बदलना नहीं चाहती थी। तो शायद अब कंपनीज का एक परमानेंट स्टेक इंडिया में आ गया है क्योंकि इंडिया को एक्सपेंशन में उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत प्रोएक्टिव हो गई है और एक बहुत अच्छी बात हुई है कि उनमें भी एक तरह से होड़ लगी है एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पाने के लिए। लॉन्ग टर्म रोड मैप जब हम एक्सपोर्ट का देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो एक्सपोर्ट की तरफ मुड़ रही है, वो एक्सपोर्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ रही है वो इंडिया को एक बेस बना रही है, ना खाली इंडिया में सप्लाई करने के लिए बट वो ग्लोबल हब इंडिया को बनाना चाहती है पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए।
0: यहाँ पर आपने चर्चा की सनराइज सेक्टर की और साथ ही पारंपरिक की, तो पारंपरिक क्षेत्र जिसमें कह लें कि कुटीर उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी अवसर बनता है, उसके अलावा जो मझोले हैं SMEs हैं उनके लिए अवसर बनता है, उनका क्या भविष्य नजर आ रहा और उनके सामने चुनौतियां क्या देख रही और उसका समाधान सरकार के स्तर पर क्या ढूंढा जा रहा?
1: देखिए, जहां तक आप हमारे कुटीर उद्योगों की बात कीजिए या जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योगों की बात कीजिए, उनके

0: एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उन एग्रीमेंट पे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा. जैसे कि हम बात करें, अगर हम यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बात करें और हम टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर को लेके रखें, तो इनमें बहुत हाई ड्यूटी है. अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, वहां पे भी टेक्सटाइल और फुटवेयर में बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी है. हम अभी भी उन मार्केट में हैं, और अगर हमें ये टैरिफ का एडवांटेज मिलता है तो इन सेक्टर में हम अपना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं. तो जहां हम अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हमारे हैं उनके ऊपर उन मार्केट में ड्यूटी बहुत ज्यादा है. अगर मान लें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो शायद यूके और ईयू में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे 5% ड्यूटी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो 16-20% ड्यूटी हो सकती है. फुटवेयर में 10-20% ड्यूटी हो सकती है. तो जो मार्जिन टैरिफ का एडवांटेज है वो इन मार्केट में इनको बहुत ज्यादा मिलेगा. जहां तक चुनौतियां हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एडवांस इकोनॉमीज के साथ कर रहे हैं, और मार्केट एक्सेस इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड मूव कर रहा है, अब ट्रेसिबिलिटी और सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के लिए. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको टैरिफ का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास मार्केट एक्सेस होगा. तो ये मार्केट एक्सेस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसे हम बात करें कि अभी यूरोपियन यूनियन में इको सस्टेनेबल प्रोडक्ट रिजीम आ रही है, यूरोपियन यूनियन में EUDR का रेगुलेशन आया है, तो ये जितने रेगुलेशन आ रहे हैं वो कंप्लायंस कॉस्ट इंडस्ट्री की बढ़ा रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट ने इन चैलेंजेस को पहले से ही देख लिया है. उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में एक ट्रेस की स्कीम लाई है, जिसमें टोटल जो सर्टिफिकेशन और जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसमें माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को 95% जो कॉस्ट है वो रीइंबर्स हो रही है, और हर इंडस्ट्री को हर साल 50 लाख तक का ये सपोर्ट मिलेगा. जो हमारी मीडियम इंडस्ट्री है उनको 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन टेस्टिंग रीइंबर्स हो रही है 50 लाख की सीलिंग से. तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया हुआ है. जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर हैं, जो मझोले एक्सपोर्टर हैं, उनको इस सपोर्ट को लेना चाहिए, और नए तरह के जो भी सर्टिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे अपने को इक्विप करना चाहिए.
1: जो छोटे कहले निर्यातक है जिनका कारोबार अपेक्षाकृत छोटा है, वह कैसे इस प्रमाणन को प्राप्त कर सकते हैं और पूरा लाभ अपने उत्पाद का ले सकते हैं?
0: देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मैं फल का एक एक्सपोर्ट करता हूँ यूएस में, तो उसके लिए मेरे को एक FDA का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है. एक तरह से उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट 20 लाख रुपए है, और मैं एक लघु उद्योग का एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे लिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है. तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हमें 95% जो 20 लाख का है वो वापस करती है. मतलब हमारे पास 19 लाख रुपए जो 20 लाख में आपने खर्च किए, 19 लाख रुपए वो सरकार आपको वापस दे रही है. सरकार का पूरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्टिफिकेट लें और अपने को एक्सपोर्ट मार्केट में एस्टैब्लिश करें. तो ये सरकार को मानना है कि ये सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और इमीडिएटली इस तरह का सपोर्ट दिया गया है. लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया के जितने नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे, उसमें हमने MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट की बात की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लैब है वो भी रिकॉग्नाइज्ड हो. तो अगर हमारी लैब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने लगेंगी, इंपोर्टिंग कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड होने लगेंगी, तो वही सर्टिफिकेशन बहुत कम दाम पे हमें इंडिया में ही अवेलेबल होगा. और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं उसका ये फायदा ले.
1: श्रोताओं की ओर से डॉक्टर सहाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं.
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में. ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है. प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत. श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में गीत फिल्म वीर.

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ें हैं। अनिल पांडे के लिखे इस गीत को संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

0: श्रोताओं, फिल्म कभी खुशी कभी गम के ऐसे गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की ये सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल

0: खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्या और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य

0: मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धनशोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की

0: तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभवित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेद और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill.

उन्होंने बरवक्त इत्तला फराहम करने, हंगामी हालात में तआवुन देने और मल्लाहों और उनके अहले खाना के लिए काउंसलिंग फराहम करने का एक निज़ाम कायम करने की भी हिदायत दी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि ऐसे तमाम इकदाम किए जाने चाहिए जिनसे कीमियावी खादों की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आजम ने मजीद जोर देकर कहा कि इस तनाजे के असरात से शहरियों और भारतीय बिरादरी के अफराद को महफूज रखने के लिए तमाम कोशिशें की जानी जरूरी हैं। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई के जराए को इस्तेमाल करने की भी ताकीद की ताकि तवानाई के शोबे में आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। इस मामले पर CCS की ये चौथी मीटिंग थी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन अफराद के खिलाफ कोई मनफी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने कौमी राजधानी में नीट UG एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की थी। अलबत्त जिन लोगों का मुजरिमाना पस मंज़र होगा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिला ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नजरसानी करने और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमे ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई करने की तजवीज़ नहीं देती और ये मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर ख़त्म समझा जाना चाहिए। इसने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे तक दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के सिलसिले में मजमूई तौर पर 13 मामला दर्ज किए हैं। टैली मवासलात के महकमे और मध्य प्रदेश की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुफाहमत नामा मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ मरहला 1 के क्याम के लिए किया गया है। ये इकदाम टेलीकॉम आलात और मुंसलिका टेक्नोलॉजियों के लिए आलमी दर्जे का मैनुफैक्चरिंग इको निज़ाम वज़ा करने के लिए किया गया है। ये रोज़गार के नुमाया मौके वज़ा करेगा, इलाकाई सनअती तरक्की को फ़रोग देगा, सप्लाई चेन लचक को मुस्तहकम करेगा और टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग और इख्तरा के लिए भारत को एक आलमी हब के तौर पर कायम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक नए बाब का आगाज है। तकरीब से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि ये इकदाम रियासत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन पैदावार और आलमी बरामदात के लिए एक कलीदी मरकज में तब्दील करने की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया हलके में वोट डाले गए। चुनाव कमीशन के मुताबिक बांकीपुर हलके में आखिरी खबरें मौसूल होने तक 34% से ज़्यादा वोटिंग हुई। मंजालपुर हलके में 37% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई जबकि दतिया हलके में 71% से ज़्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने आज एक दूसरे पर ताज़ा मिज़ाइल के हमले किए जिसके बाइस बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग के अंदेशे उभर कर आए हैं। नीज किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताज़ा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि ये जंग मजीद मुल्कों में भी फैल सकती है। उर्दून ने कहा है कि उसने मुसलसल दूसरे रोज़ 5 ईरानी मिज़ाइलों को नाकारा बना दिया है। कुवैत ने खबर दी है कि मुल्क के जुनूब में एक चीनी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक इमारत ईरानी हमले से मुतासिर हुई जिसमें एक शख्स हलाक जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जंग का यह हालिया फैलाव ईरान पर वसी पैमाने पर अमरीकी हमलों के बाद हुआ है जो उसने उर्दुन में एक फौजी ठिकाने पर ईरान के मिज़ाइल के हमले के जवाब में किया था। दोनों जानिब से मिज़ाइल के ये हमले सऊदी अरब के साथ तालमेल से अमरीका के जरिए इराक में ईरान की मुआविनत वाले मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। खबर है कि हमलों में कम से कम 20 फाइटर्स और 6 ईरानी फौजी मुशीर हलाक हुए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्ला अफवाज की जानिब से वहशियाना हमले के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मुसल्ला अफवाज की फायरिंग में पीर के रोज़ 40 से ज़्यादा सिविलियन हलाक हुए थे। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स में मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा गया है कि मुजाहिरीन वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ रावलकोट के डी चौक पर कई दिन से बैठे हुए हैं और वो एक लॉन्ग मार्च का नारा दे रहे हैं जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए बेरहमाना और बहिमाना हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।

कन्यादान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, नीरज के लिखे शब्द और संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म घर से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है RD बर्मन ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म आराधना से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी और इस गीत को संगीत दिया था SD बर्मन ने। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं। मुकेश ने इस गीत को गाया है, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई, आनंद बख्शी के लिखे बोल और फिल्म का नाम है हिमालय।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म का ये गीत निकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं। इसे लिखा है गुलशन बावरा ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है जंजीर और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म हीरा पन्ना से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्म हीरा पन्ना के सी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद।
1: प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: क्वेश्चन नंबर 21।
4: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
5: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर
2: रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: थैंक यू सर। Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation

0: सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है। और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी।
2: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रूपी विल्सन जी।
4: Through this house, I would like to ask the Honorable Minister the reasons for the government decision to abstain from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers, and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है, और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए, या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है,
6: उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
7: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑफ कोड ऑन वेजेस will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
6: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बन गया। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है ESIC के लाभार्थी है उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इंप्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया ये मैं आपके द्वारा सदन को देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। एक कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
8: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल

0: जाए जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
4: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क, ख क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ा

0: आने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है, और घ देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
2: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशन दी है ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगहें हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once or 3 year once or 2 year once regularly. The ministry should announce the minimum wages every financial year without fail. Sir, the minimum wages not announced yearly by the ministry. The ministry has any proposal to announce minimum wages every financial year that will help the laborers across the country. Thank you, sir.
1: Honorable Minister.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार वीडीआर के द्वारा, वीडीएस के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
5: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है। वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे उड़ीसा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और कि ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
5: 124
0: प्रश्न संख्या 124। क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है? और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री
5: पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
6: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं, और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी
1: है?
7: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा, त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट

0: हमारा रैंक अभी फिफ्थ है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए. तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है. धन्यवाद.
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी.
2: शुक्रिया चेयरमैन सर. मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है. हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं. मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का. मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का या उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा. शुक्रिया.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए. इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे. तो नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है. और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है. सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं. एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माई भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं. युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए. इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे. एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए. हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है. वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है. और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है. सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े. इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है.
1: हेड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार.
4: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

0: कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी, कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग हो रही है पूरे देश में, और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है। और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े, कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है, उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है, और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था, और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है, और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है, और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका स्ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना, और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है, और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125।
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित

0: कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
2: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं। महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना, यानी एक ही पगड़ देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में फ्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसके पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब, नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2,00,000 स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम
4: जॉब दिया।

0: मैंने एंटरप्रेनर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए जॉब दिलाने के लिए यानी सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स में सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में से प्रवृत्त किया गया है इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के और ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे, वो कानून हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है इसलिए महिला होना चाहिए ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का काम बढ़ा है सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था। पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं। ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है। ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास

0: नहीं, वो पहले बहुत साल से मांग था लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
3: प्रश्न संख्या 126। क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
4: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, व्हाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड, इंक्लूडिंग सक्सेस रेट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम के साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो सारे 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
5: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए

0: कंट्री का विकास भी करेंगे, विकास भी करेंगे, विरासत को भी बताएंगे। धन्यवाद।
1: द हाउस स्टैंड्स अडजर्न्ड टू मीट एट 2 पीएम।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जाँच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं।

0: राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre." The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent, technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws, and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide